FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 28वीं तिथि तदनुसार 19 जुलाई 2026 सवेरे के ठीक 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है।

0: संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामूल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आई सुनते हैं वंदनवार चिंतन।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य कल्याणकारी कार्यों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, यानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के ठीक बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 254। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आज सुनिएगा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7 बजे से, 7:30 से हम है राही प्यार के, 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार नीरज पर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुन सकेंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से विविधा के अंतर्गत सुधीर फड़के पर चर्चा और चित्र भारती, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे का समय है सुरीला सफर का, त्रिवेणी दोपहर 2 बजे से। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। मनचाहे गीत श्रोताओं के पत्रों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे से। दोपहर 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिएगा नाटक यात्रा का अंत, लेखन डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का, निर्देशन M.S. बेक का। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्मभूषण सही परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनिएगा, संपादन सहयोग नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से, झरोखा सुनेंगे शाम में 6:30 से, 6:35 शाम संध्या रंजन और शाम 7 बजे से फौजी साथियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम विशेष जयमाला। इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की शौर्य गाथा सुन सकेंगे, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज के अंतर्गत गिटार वादन शोमू सील का। रात 8 बजे से हवा महल में सुनिएगा झलकी लालटेन की वापसी, लेखन केपी सक्सेना का, निर्देशन महेंद्र मोदी का। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए यह कार्यक्रम सुन सकेंगे, रात 9 बजे से, रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख है उमसर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 से और विविधा सुनिएगा रात 11 बजे से। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनिएगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार नीरज पर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अभी आप सुन रहे थे झरोखे के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्रीराम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्याकाल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है। और पूरिया पूरिया धनाश्री श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद, यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋखब और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय, यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं, बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूर्यांग से पूर्या कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा कल का राग है श्री। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

आकाशवाणी अलवर के सभी सम्मानित और प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं आपका रेडियो मित्र आशीष मालानी कार्यक्रम नमस्कार अलवर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज हमारा देश आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। विकास की इस मुख्य धारा में हमारा भारत देश पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रांतिकारी और युगांतकारी विषय पर जिसने हमारे दैनिक जीवन, व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था को बेहद सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बना दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति के बारे में।

श्रोताओं, आज जब हम अलवर शहर के व्यस्त और जीवंत बाजारों से गुजरते हैं, चाहे वह होप सर्कस या घंटाघर के ऐतिहासिक बाजार हों, मन्नीकाबड़ की व्यस्तता हो, स्कीम नंबर 2 की आधुनिकता हो, या तिजारा फाटक जेल चौराहे पर बस को पकड़ने की जद्दोजहद हो, या रेलवे स्टेशन पर हो ट्रेन का इंतजार, या हो चूड़ी मार्केट की गलियां, हर तरफ एक अत्यंत सुखद और विस्मयकारी दृश्य दिखाई देता है। अब किसी बहुमंजिला आलीशान शोरूम से लेकर सड़क किनारे सजी कढ़ी कचौड़ी की दुकान और सुबह सुबह भाप उड़ाती चाय की एक छोटी सी थड़ी तक, हर स्थान पर एक छोटा सा QR कोड पूरे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ मुस्कुराता नजर आता है। UPI के इस जादुई युग ने हमारे पारंपरिक भारी भरकम बटुए को गुजरे जमाने की बात बना दिया है। मात्र एक त्वरित स्कैन, एक सुरक्षित पिन और पलक झपकते ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपका लेन देन सीधे आपके बैंक खाते में संपन्न हो जाता है। तकनीक ने न केवल हमारे धन को सुरक्षित किया है, बल्कि मानव जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर हमारे समय को भी बचा लिया है।

श्रोताओं, आपको एक भारतीय होने के नाते वैश्विक मंच पर गर्व से भर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भारत की इस डिजिटल भुगतान प्रणाली का लोहा संपूर्ण विश्व, यहां तक कि पश्चिमी महाशक्तियां भी मान रही हैं। जो तकनीक कभी केवल विकसित और अमीर देशों की जागीर मानी जाती थी, भारत ने अपनी स्वदेशी प्रतिभा से उसे इतना सरल और इतना सुलभ और इतना लोक कल्याणकारी बना दिया है कि हमारा भारत देश का एक साधारण रेहड़ी पटरी वाला भाई, एक ग्रामीण किसान और हमारी गृहणियां भी इसका उपयोग पूर्ण स्वाभिमान के साथ कर रहा है। वैश्विक आंकड़ों के धरातल पर देखें तो आज भारत संपूर्ण विश्व में होने वाले कुल डिजिटल लेन देन के आधे से अधिक हिस्से का नेतृत्व कर रहा है।

श्रोताओं, डिजिटल भुगतान क्रांति केवल ग्राहकों की सहूलियत तक सीमित नहीं है। इसने हमारे लघु उद्योगों, स्थानीय दुकानदारों और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को भी एक अभूतपूर्व वित्तीय शक्ति दी है। अब प्रत्येक लेनदेन पारदर्शी है, जो सीधे बैंक खाते में दर्ज होता है, जिससे छोटे व्यापारियों की वित्तीय साख मजबूत होती है और भविष्य में व्यापार विस्तार के लिए बैंकिंग लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना अत्यंत सहज हो गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सबसे सशक्त भागीरथ प्रयास है।

0: मेरे प्रिय श्रोताओं और प्रबुद्ध नागरिकों, इस डिजिटल युग के प्रकाश के साथ साथ एक सजग नागरिक की भांति सतर्कता का कवच धारण करना भी परम कर्तव्य है। स्मरण रहे, डिजिटल क्रांति के दौर में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की कहावत कई बार चरितार्थ हो जाती है। आपकी थोड़ी सी असावधानी आपकी गाड़ी कमाई को संकट में डाल सकती है, इसलिए डिजिटल लेन देन करते समय पूर्णतः विवेकपूर्ण और सावधान रहें।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अपना गोपनीय यूपीआई पिन नेट बैंकिंग अथवा आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड या आपके मोबाइल पर आया कोई भी वन टाइम पासवर्ड ओटीपी कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी अज्ञात व्यक्ति या भ्रामक फोन कॉल पर साझा न करें। कोई भी प्रामाणिक बैंक या अधिकारी आपसे कभी भी आपका पिन नहीं मांगता। आपकी सजगता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो आइए हम सब मिलकर इस डिजिटल क्रांति का पूर्ण हृदय से अभिनंदन करें, इसके सक्रिय प्रहरी बने और अपने दैनिक जीवन व्यापार को अधिक स्मार्ट, डिजिटल और सशक्त बनाएं। आइए हम अब मिलकर अपने शहर अलवर को, वीरों की भूमि राजस्थान को और अपने इस प्राणों से प्रिय महान भारतवर्ष की प्रगति, स्मृति और आधुनिकता के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिस्थापित करें।

आप सभी डिजिटल माध्यमों को अपनाएं और डिजिटल भुगतान क्रांति का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र आशीष मालानी को। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अलवर, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियल।

अनवर सागर के लिखे गीत को अपनी आवाज दी अभिजीत और अलका याग्निक ने। गाने की धुन तैयार की थी जतिन ललित ने। फिल्म का नाम खिलाड़ी का अभी आप ये गीत सुन रहे थे। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले कुमार सानू की आवाज में जान तेरे नाम फिल्म का गीत। गीत की रचना है समीर की और संगीत नदीम श्रम।

0: Lincoln Road, the Warden Road, Duncan Road, Lamington Road,
1: Cadden Road. देव कोहली के लिखे गीत को अपनी आवाज दी लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। गाने की धुन तैयार की थी राम लक्ष्मण ने। फिल्म का नाम पत्थर के फूल का भी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म संगीत में आज का आखिरी गीत सुनवा रहे हैं आपको अमित कुमार कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में शोला और शबनम फिल्म से। गीत की रचना है अनजान की और संगीत बप्पी लहरी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड

0: ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे, मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 12:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात FM एंड 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संग।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह को सुगम संगीत में। सुगम संगीत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे क्या होता है बाइपोलर विकार। इस विषय पर डॉक्टर जे एस शर्मा से बातचीत कर रहे हैं शिव कुमार शर्मा।

0: विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अलवर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर जे एस शर्मा। शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: शुरुआत में हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, दो ध्रुवीय विकार। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दो ध्रुवीय विकार क्या है।
1: वास्तव में ये एक मानसिक रोग का बहुत बड़ा विकार है जिसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। बाइपोलर का मतलब है दो पोल के बीच में, अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है मूड डिसऑर्डर। तो ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर होता है। अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि ये बाइपोलर क्यों कहलाता है। देखिए, अपनी जो जिंदगी होती है दो पोल के बीच में झूलती रहती है, स्विंग करती रहती है, जैसे पेंडुलम घड़ी का चलता रहता है एक तरफ और दूसरी तरफ। तो पेंडुलम के एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ गम है। तो हम जो अफेक्टिव डिसऑर्डर को मानते हैं, मूड डिसऑर्डर को मानते हैं, वो दो विकारों के बीच में है जिसमें एक तरफ बहुत खुशी है जो एक पोल है और दूसरा है बहुत गम। तो इन दो पोलों के बीच में अपनी जो जिंदगी या हमारे जो मानसिक रोग जो घूमता रहता है, डोलता रहता है, हिलता रहता है, चलता रहता है, उसको हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जिंदगी दो खुशी और गम के बीच में जो डोलती रहती है उसको बाइपोलर बोलते हैं।
0: सर, ये तो बाइपोलर के बारे में आपने बताया। कई बार मूड स्विंग की भी हम बात करते हैं कि मूड अभी अच्छा है, अभी खराब है, तो ये भी इससे मिलती जुलता ही है कि भाई मूड भी ऐसे पेंडुलम की तरह स्विंग करता है, अभी अच्छा है अभी खराब है। तो इन दोनों में अंतर क्या है?
1: जी बिल्कुल, आपने सही सोचा और सही प्रश्न भी किया है। देखिए, वैसे तो जिंदगी में अच्छा और बुरा, सुख और दुख हमेशा आते ही रहते हैं। जब आदमी उनको सहज तरीके से लेता है, सामान्य तरीके से लेता है, सामान्य तरीके से किसी चीज के रूप में खुश होता है तो उसको सामान्य लिया जाता है, और असामान्य तरीके से कोई चीज ले लेता है क्योंकि एक अपने संस्कृति में, एक अपने धर्म में, अपने फिलॉसफी में एक चीज है, अति सर्वत्र वर्जिते। अगर कोई चीज अति हो जाती है, अधिक हो जाता है, तो बीमारी में आ जाता है। यहाँ पे मैं उसी चीज का उपयोग करना चाहूंगा। नॉर्मल तरीके से अपन खुश हो रहे हैं किसी चीज के रिएक्शन में, कोई अपन को अच्छा अचीवमेंट मिला है, अपन खुश हुए, अच्छी चीज है। लेकिन जरूरत से ज्यादा बिना मतलब ही अपन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो उसको अपन बीमारी के रूप में ले लेते हैं। इसी तरीके से कोई अपने घटना दुर्घटना ऐसी हुई जिसमें अपना मन खराब हुआ, अपन थोड़े कुछ समय के लिए दुखी हुए, तो इसको अपन सामान्य तरीके से लेकर, लेकिन अत्यधिक तरीके से दुखी हुए, बहुत दिनों तक दुखी होते रहे और इतना दुखी हो गए कि अपने रोज के कार्यक्रम या अपनी फैमिली के कार्यक्रम या अपने ऑक्यूपेशन काम भी इससे प्रभावित होने लगते हैं, और आदमी इस हद तक पहुंच जाए, इतना दुखी हो जाए कि साहब मैं तो मर जाऊं, सुसाइड के बारे में सोचने लग जाए, तो ये फिर बीमारी में आ जाता है। तो ये जो मूड स्विंग है, बाइपोलर है, वो नॉर्मल का ही वेरिएशन है। अत्यधिक होने पर हम इसको बीमारी मानते हैं और सामान्य तरीके से होने पर हम इसको बीमारी नहीं मान के सामान्य मानते हैं।
0: सर, हम इसको वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इसका एक खास दिवस भी मनाया जाता है, बाइपोलर डे। तो इसके बारे में बताएं, ये दिवस कब मनाया जाता है और क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है ये दिवस?
1: जी, ये वर्ल्ड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डे के रूप में मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, वैसे तो हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है और अलिखित हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। जहां तक लिखित हिस्ट्री का सवाल है, रिटन हिस्ट्री का है, डच अपने एक पेंटर हुआ करते थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, वो ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के मरीज थे और अंत में उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी मेंटल हॉस्पिटल में ही हुई थी। और उनको इस तरह का वेरिएशंस होता रहता था, कभी मूड बहुत अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग करते थे, फिर बहुत मूड खराब हो गया तो बहुत ऐसी डिप्रेसिव पेंटिंग करते थे। तो वहां से जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस मृत्यु के नाम पे इनका बाइपोलर अफेक्टिव डे 30 मार्च को मनाया जाता है। उनकी मृत्यु दिवस है 30 मार्च, तो इसलिए उसको बाइपोलर अफेक्टिव डे के रूप में मनाया जाता है।
0: सर, आप भी क्योंकि मनोचिकित्सक है तो इस प्रकार के व्यक्ति जब आपके सामने आते हैं तो क्या पता चलता है, कैसे लक्षण जानकर आप जान जाते हैं कि बाइपोलर इसको हो सकता है?
1: इसमें देखो, जानने का सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हमारे पास में मरीज को लाया जाता है तो अब तो क्योंकि हमारा तो इतना अनुभव हो गया है कि हम उसको देखने, उसके बातचीत करने, उसके पहनावे को देख के, हाव भाव एक्सप्रेशंस को देख के पता लग जाता है कि आदमी डिप्रेस्ड है या इलेटेड है। इसमें इलेटेड वाले को हम मैनिया बोलते हैं और डिप्रेशन वाले को डिप्रेस्ड बोलते हैं। तो मैनिक फेज का मालूम करने के लिए सबसे पहले हम मरीज को तो देखते ही, उसके अलावा हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं आसपास के रिलेटिव से, दोस्तों से जो उसके साथ में आते हैं। तो हम दोस्तों से जब पूछते हैं तो मालूम होता है कि ये आदमी एक तो सो नहीं रहा है, एक बहुत ज्यादा बात कर रहा है, अनावश्यक गुस्सा कर रहा है, अनावश्यक खर्चा कर रहा है, 5 रुपए की जरूरत हो 50 रुपए खर्च कर रहा है। कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए वो लड़ाई झगड़े पे

सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। हमारा मेंटल हेल्थ सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता से जुड़ा है, इसलिए जब भी कोई असंतुलन होता है तो उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता ही है। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि दो ध्रुवीय विकार। अब ये क्या है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार का रोग है, इस

0: भी हो जाता है कि उसकी बात यह तो मानो, वरना फिर वो लड़ाई करके मानेगा, मनवाएगा। तो इस तरह के जो चीज होती है वो मैनिया में कन्वर्ट होती है, मूड का एक पोल है। दूसरी तरफ होता है डिप्रेशन का। जब आदमी बहुत ज्यादा मैनिया में होता है तो बहुत दिनों तक मैनिया मेंटेन रहता नहीं है, एक ना एक बार वो अपने स्वतः तरीके से मैनिया नॉर्मल हो जाएगा या दवाइयों के द्वारा हो जाएगा, तो फिर आदमी का दूसरा मूड शुरू होता है डिप्रेशन का। ये अफेक्टिव डिसऑर्डर का, बाइपोलर का दूसरा पोल है। यहाँ भी हमारे पास में जब मरीज आते हैं तो मरीज तो देखने से पता लग ही जाता है कि चुपचाप है, सुस्त है, बहुत दिनों तक नहाया नहीं है, कपड़े चेंज नहीं किए हैं, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, लेकिन उसके जो आसपास के रिलेटिव जो उसको लेके आते हैं वो बताते हैं साहब ये बहुत सुस्त रहता है, रात को सोता नहीं है, सारी रात जगता रहता है, खाना इसने खाना बंद सा कर दिया है, क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है, नहाता नहीं है, अपने काम पे नहीं जाता, बहुत दिनों से काम पे जा ही नहीं रहा है, मूड ही नहीं कर रहा है काम पे जाने का। और साहब कभी कभी तो ये ऐसे महसूस करता है कि जिंदगी बहुत ज्यादा खराब है, मर जाए तो हत्या है, सुइसाइडल आइडियाज, सुइसाइडल थॉट्स और सुइसाइडल अटेम्प्ट्स भी करने लग जाता है। तो ये दो तरह के जो सिम्टम्स हैं आपको मैनिया के और डिप्रेशन के मैंने आपको बताए। लेकिन सबसे खूबसूरती की बात ये होती है कि डिप्रेशन में तो आदमी को इनसाइट रहता है, ये ज्ञान रहता है कि वो डिप्रेस्ड है, लेकिन मैनिया में अक्सर मैंने ये देखा गया है और हमारे लिटरेचर में भी ये लिखा गया है कि मैनिया में मरीज को ये ध्यान पता नहीं रहता है कि वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है। तो जब भी कभी हम मरीज को ये बोलते हैं कि भाई तुम इस तरीके से क्यों उत्तेजित हो रहे हो, वो कहता है मैं तो कहाँ उत्तेजित हो रहा हूँ, ये जो मेरे को रिलेटिव जो रिश्तेदार लेके आए इनको दवाई की ज्यादा जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैनिया में एबसेंट ऑफ इंसाइट होता है, जबकि डिप्रेशन में बहुत हद तक इंसाइट होती है बीमारी के बारे में, वो पता होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो अपने आप को नॉर्मल ही मानता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जो परिवार वाले, उसका जो फ्रेंड सर्किल है या समाज के लोग क्या बता रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है।
0: देखो हमें इसको दोनों चीज़ों में मान के चलते हैं, हम एक एक निचोड़ निकालते हैं, रिलेटिव से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पेशेंट को देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फिर इनका जो निचोड़ निकलता है फिर हम इसके ऊपर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये किस बीमारी से ग्रसित हो रहा है। तो हमारे लिए खाली मरीज को ज्यादा नंबर देना या रिलेटिव को ज्यादा नंबर देना नहीं है, हम दोनों को निष्कर्ष निकालते हैं फिर दोनों की बात का।
1: जी तो सर, फिर इसका जो इलाज है वो किस तरह से शुरू आप करते हैं, कि इसको आप दवाइयों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते हैं या उसको सामाजिक या कोई साइकोलॉजिकल कोई और ट्रीटमेंट आप करते हैं?
0: देखिए जब उत्तेजना की अवस्था में होता है, मैनिक फेज में होता है, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से दवाइयां ही उसमें काम आती हैं, क्योंकि वो आदमी इतना ज्यादा उत्तेजित होता है कि खुद के लिए, समाज के लिए, आसपास के लोगों के लिए वो एक खतरा बना हुआ होता है, और इसमें अगर अपन ने उसका इलाज नहीं किया दवाइयों के द्वारा तो वो विध्वंसकारी भी हो जाता है, जिसको आपका बहुत ज़्यादा उत्तेजना की स्टेज हो जाती है। तो वहाँ हम उनको दवाइयों के द्वारा काम करते हैं, जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी ली जाती हैं, कभी इंजेक्शन भी दी जाते हैं, और पुराने ज़माने में हम ECT भी, शॉक थेरेपी भी देते थे, आजकल तो बहुत कम दिया जाता है, नहीं दिया जाता, लेकिन पहले हम ये देते थे। जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल है, डिप्रेशन में मरीज खुद ही कई बार तो हमारे पास में चल के आता है कि साहब मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, काम पे नहीं जाता हूँ, मेरा मन बिल्कुल उदास रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे जिंदगी बिल्कुल खराब है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस हो गया हूँ, और ऐसा लगता है कि साहब मर जाऊँ तो अच्छा है। तो इसमें भी हम फिर उसको दवाइयों के द्वारा ठीक करते हैं। एक बार जब ये ठीक हो जाते हैं तब हम साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, विभिन्न प्रकार के योग, और उसको ये समझाते हैं कि अब तुमको अपनी जो रूटीन है इसको मेंटेन करना है, जिससे नेक्स्ट एपिसोड नहीं आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मूड डिसऑर्डर्स हैं एपिसोडिक इलनेस हैं, ये एपिसोड्स आते रहते हैं, कंटिन्यूस इलनेस नहीं, कभी कभी एपिसोड आ गया फिर एपिसोड अपना आप भी ठीक हो जाएगा, कभी दवाइयों के भी ठीक हो जाता है दवाइयों के द्वारा भी, तो ये एपिसोडिक इलनेस है, कंटिन्यूस इलनेस नहीं है।
1: जी सर, अब ये सवाल उठता है कि ये विकार आता कैसे हमारे शरीर में, शरीर है वो पूरी सामान्य तौर से हम स्वस्थ हैं, तो फिर ये विकार किस प्रकार से, किस रास्ते से आता है?
0: ये बिल्कुल सही आपने पूछा है, ये विकार आता कैसे है। देखिए अपने भगवान ने अपन को एक दिमाग दिया है और इसकी इसकी तुलना अपन किसी एक सुपर कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में दो चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कभी कभी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो उसी तरीके से रिजल्ट देता है जो सॉफ्टवेयर में गलत फीडिंग हो गया है। ठीक उसी तरीके से अपने दिमाग में भी सॉफ्टवेयर है, एक दिमाग है जो कि अच्छे का बुरे का ज्ञान कराता है, बुद्धिमान बता होने का परिचय देता है, सारी चीज है। तो इसमें ये जो दिमाग चलता है अपना बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज से और केमिकल एक्टिविटीज से चलता रहता है, वो केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें बैलेंस खत्म हो जाता है, तब

0: ये मेनिया और डिप्रेशन के रोग पैदा हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है जिसको कि मैं आपको इस माध्यम से तो नहीं बता सकता, लेकिन आप मोटा मोटा यही की है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स की गड़बड़ी की वजह से मेनिया होता है और उसकी ही गड़बड़ी की वजह से, उसमें ही कम होने की वजह से ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है।
1: जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझा रहे हैं बाइपोलर के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले एक सर गीत संगीत की बात करते हैं, हमेशा की तरह आपकी पसंद का कोई ऐसा गाना जो अभी आप सुनवाना चाहें।
0: जी अरिजीत का वो एक आप गाना है जो तू मेरा कोई ना होके भी लग मुझे प्यारे।
1: जी बहुत ही नया गाना है। हाँ, तो पहले तो आप पुराने गाने सुनते थे, इस बार आपका जो टेस्ट है वो कुछ बदल गया है।
0: जी जी सर, अब मॉडर्न जमाना है ना, तो मेरे को भी नए नए कलाकारों के संपर्क में आने का अच्छा लगता है।
1: जी चलिए सर, वक्त के साथ ही चलना चाहिए। सुनते हैं इस गीत को।

अभी आपने अरिजीत की आवाज़ में ये गीत सुना और डॉक्टर साहब की पसंद थी, बहुत ही खूबसूरत पसंद है। हम बात कर रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, तो डॉक्टर साहब जब ये, जैसे हमने बात की थी दो चरण के बारे में, एक तो मेनिया यानी कि बहुत अधिक

0: खुशी और एक डिप्रेशन बहुत अधिक दुख आदमी हो जाता है, तो इसका कोई पीरियड होता है क्या? ये कुछ मिनटों का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, या महीनों तक एक ही चरण में रह सकता है व्यक्ति?
1: देखिए बिल्कुल इसका ड्यूरेशन भी होता है, लेकिन ड्यूरेशन हर एक आदमी से अलग अलग वेरीज करता रहता है, हर एक आदमी में अलग होगा। किसी में बहुत, जैसे अपन ने कभी देखा होगा ना कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है बिना किसी मतलब के, तो ये एक मैनिया का हल्का सा फेज है, बिना कारण के आदमी बहुत खुश रहता है। फिर कभी कभी देखा होगा कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मूड ऑफ हो गया, जैसे अक्सर ये चीज कही जाती है, तो वो डिप्रेशन का एक हल्का सा पार्ट है। ये कुछ घंटे भी रह सकता है, कुछ दिन भी रह सकता है, कुछ सप्ताह भी रह सकता है
0: जी।
1: लेकिन जब ये बीमारी के रूप में आ जाता है तो अपन इसको सप्ताह भर तो मिनिमम सा मानते ही हैं, एक सप्ताह से लेकर फिर महीनों तक रह सकता है। वो तो उत्तेजना की अवस्था होती है मैनिया की। इसी तरीके से जब डिप्रेशन कन्वर्ट होता है या डिप्रेशन अपने आप से भी होता है तो वो भी दिनों से लेकर महीनों तक रहता है। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो दो दो तीन तीन महीने तक खाट में ही पड़े रहते हैं
0: जी,
1: उठते ही नहीं है, तो वो डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन कुछ रैपिड साइकिलर्स भी होते हैं। रैपिड साइकिलर का मतलब होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि सप्ताह भर से पहले हम उस चीज को मैनिया या डिप्रेशन में कन्वर्ट काउंट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे या 48 घंटे में मूड वेरिएशन होता है। मेरा मूड बहुत अच्छा हुआ, फिर मेरा मूड बहुत खराब हो गया, तो रैपिड साइकिलर्स कहलाते हैं। ये अलग तरह का होता है, लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन में तो एक बार डिप्रेस्ड हो गया आदमी तो बहुत दिनों तक डिप्रेस्ड ही रहता है, तो रैपिड साइकिलर्स में जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता रहता है।
0: डॉक्टर साहब एक आम बात हम करें कि सोकर जब हम उठते हैं सुबह तो कई बार उठने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि आज हमारा मूड अच्छा रहने वाला है या खराब रहने वाला है, तो सर वो क्या बात होती है कई बार?
1: बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसा आदमी सोचता है वैसा ही हो जाता है और वैसा ही करने लग जाता है। अगर आप सुबह उठ के अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो आपका दिन अच्छा निकलेगा। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को जो सुबह उठते ही अपने ग्रहों के बारे में, बुरे दिन के बारे में, कुछ अनर्थ होने के बारे में, कुछ दुर्घटना के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो दिन भर ही फिर उनका मूड ऐसा रहता है। तो मैं इस माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। सुबह जैसे अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में ये है कि भगवान के सामने हाथ जोड़िए और पूरे दिन भर खुश रहने का आप उनको आशीर्वाद लीजिए, जिससे आप दिन भर खुश रहें। अब अगर आपको कोई परेशानी भी हो रही है तो उसमें भी खुशी ढूंढें, तो जैसा आप सोचेंगे ना फिर आपको वैसा ही लगेगा। परेशानियों में भी आप अगर खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानियां बहुत ज्यादा दुख नहीं देंगी, बहुत परेशानी पैदा नहीं करेंगी। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए।
0: जी सर, खुश रहना व्यक्ति के कितने कंट्रोल में होता है? कोई व्यक्ति खुश रहना चाह रहा है लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं तो वो चाह के भी खुश नहीं हो पाता, तो क्या व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है कि नहीं मुझे खुश ही रहना है या मुझे इसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना है?
1: देखिए परिस्थितियां तो आदमी के कंट्रोल में नहीं होती हैं, परिस्थितियां तो अपने अनुसार ही चलती रहती हैं। लेकिन अगर आदमी का एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, परेशानियों में भी वो समाधान की तरफ जाएगा, समस्याओं में भी समाधान ढूंढेगा, नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव ढूंढेगा, अंधकार में भी रोशनी की तलाश करेगा, तो डेफिनेटली उसको खुशी मिलेगी और उसको जो गम की भी चीज होगी, जो परेशानी होगी, बहुत हल्की महसूस होंगी। यहां मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, आप अपने रिश्तेदारों का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का हेल्प लीजिए, नहीं है तो आप मनोचिकित्सक की हेल्प लीजिए, जिसके सामने अपने सारी दिल की बात कहिए, वो आपको सजेस्ट करेगा। कभी कभी अंधकार में अपन को ये नहीं पता लगता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर कोई उसी अंधकार में आपको आदमी मिल जाए जो अनुभव रखता हो तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पे आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपके हेल्पफुल बनेंगे।
0: जी सर, क्या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर किसी व्यक्ति को है तो एक सामान्य जीवन जी सकता है?
1: बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर होना कोई बीमारी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बाग बहुत अच्छे से खुश खुश रहते हैं, बहुत सारा काम करते रहते हैं और उनमें एनर्जी अपन में देखने लगती है बहुत अच्छी है, ज्यादा है, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं है कि जो नुकसान कर रही हो, तो ये लोग बाग हमेशा खुशी खुशी में रहते हैं। जैसे बहुत सारे आपके एथलीट्स देखे होंगे, इनको हमेशा ट्रेनिंग भी दी जाती है और एटीट्यूड भी इनका यही होता है, हमेशा खुश रहते हैं तो अच्छा आउटपुट दिखाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या गुरुजन और टीचर्स उनको जो ढाढ़स बंधाते हैं, वो अपने आप का एटीट्यूड चेंज करते हैं तो अच्छे रिजल्ट लेके भी आते हैं
0: जी।
1: तो ऐसी बात नहीं है कि अगर चारों तरफ का वातावरण आपका पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, मूड भी अच्छा होगा
0: जी। बाइपोलर में सर एज फैक्टर कितना काम करता है? क्या ये किसी भी एज फैक्टर को हो सकता है या कोई निश्चित एज फैक्टर है जिसमें ये संख्या ज्यादा पाई जाती है ऐसे लोगों की?
1: देखिए सामान्य तरीके से तो बाइपोलर में ऐसा कोई एज का नहीं है, आदमी जन्म से लेकर और मृत्यु तक खुश भी रहता है, दुखी भी रहता है।

0: हल्का हल्का करके, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर बीमारी के बात में देखा जहाँ मनोचिकित्सक की जरूरत पड़े, इलाज की आवश्यकता पड़े, तो ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो यूजुअली आपके 20 साल से और 35 साल के बीच में पहली बार पैदा होते हैं, पहली बार दिखाई देते हैं, फिर उनका इलाज अपन को करना जरूरी हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो मूड तो कभी भी चेंज होता रहता है, लेकिन वो बीमारी नहीं है, उसको बीमारी मत मानिए
1: जी। क्या इसका इलाज पूरी तरह से शत प्रतिशत हम बात करें संभव है इसका इलाज?
0: देखिए ये है एपिसोडिक इलनेस, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखें, कंटिन्यूअस इलनेस नहीं है। तो जब भी आपका एपिसोड आता है, जब भी आपको लगता है कि इस एपिसोड की वजह से चाहे मैनिया में डिप्रेशन में मरीज को या उसके घर वालों को या उसके ऑक्यूपेशन को काम करने के तरीका को प्रभावित हो रहा है, तो उसको अपन इलाज दें। लेकिन अक्सर क्या करते हैं कि लोग बाग हमारी दवाइयों के बारे में, मानसिक रोग की दवाइयों के बारे में भ्रांतियां भी बहुत रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बाग ये कहते हैं कि साहब इनकी तो आदत हो जाएगी, साहब हमको तो नींद की दवाई की तो हमको नहीं, हमको तो नींद आ रही है। मेरा उनसे सबसे अनुरोध यही है इस माध्यम से कहने का कि आप दवाइयों के बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाया करिए। चिकित्सक आपको अपने जितना ज्ञान हो सकता है उसे कहीं आपको अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करता है, आपका भला सोचता है। कोई भी चिकित्सक नशे की कोई दवाई नहीं देता है, लेकिन हमारी हर एक दवाइयों में कुछ ना कुछ नींद का समावेश होता है जो मरीज के और उसकी बीमारी के लिए अच्छा भी है। तो हर एक नींद की दवाइयों को या हर एक सोने वाली दवाइयों को आप ये मत मानिए कि नशे की दवाइयां हैं, वो उसके लिए हेल्पफुल है। तो चिकित्सक की जब जरूरत पड़े तो चिकित्सक के पास जरूर जाना चाहिए।
1: सर किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखे जाते हैं?
0: देखिए मैनिया का जब फेज आता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ा यही होता है कि आदमी लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर की भी कॉम्प्लिकेसी हो जाती है,
1: तोड़ फोड़ करने लग जाता है,
0: बहुत ज्यादा खर्चा पानी करने लग जाता है, उधार ले लेके भी करता है, जहां 500 रुपए की जरूरत है 5000 खर्च कर दिए, मतलब बिना कुछ नहीं। इसी तरीके से कभी कभी ये गलत आदतों में पड़ के मादक दवाइयों का जैसे एल्कोहल का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो मैनिक फेज तो उसका खत्म हो जाएगा लेकिन फिर वो एल्कोहल का आदि हो जाएगा, एक नई समस्या उसने पैदा कर लेंगे। इसी तरीके से क्या होता है कि आदमी बहुत ज्यादा कर्जदार हो जाता है। डिप्रेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें कॉम्प्लिकेशन सबसे होता है कि उसका व्यवसाय प्रभावित होता है, उसके घर वालों का जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, घर में वातावरण भी ऐसा ही एक खराब सा बना रहता है कि सुबह उठते ही अच्छा वातावरण नहीं होता है। और कभी कभी इसमें हाँ डिप्रेशन वाले भी कभी कभी मादक दवाइयों का प्रयोग करके अच्छा होने की कोशिश करते हैं, मादक दवाइयां ले लेते हैं
1: जी।
0: नशे की दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेसी है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेसी क्या होती है कि आदमी सुइसाइड के बारे में सोचता है और कभी कभी ये सुइसाइड कर भी लेते हैं, और जीवन में आत्महत्या करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेसी होती है।
1: जी जी सर, हमारा मन स्वस्थ रहे पूरी तरह से, यानी मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, इसके लिए सर क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्या टिप्स आपके पास है जो हमारे तमाम श्रोता जानना चाहें आपसे?
0: सबसे पहले तो आप अपने मन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, किसी भी चीज के बारे में नकारात्मक सोच मत रखिए। आप हमेशा ये सोच के चलिए कि अंधकार में भी आपको रोशनी मिल जाएगी, प्रयास करते रहिए। अगर आपके प्रयास सफल नहीं होते हैं, आप उसमें अपर्याप्त अपने आप को महसूस करते हैं, तो अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने माता पिता की सलाह लीजिए, वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे। दोस्त भी उसमें ऐसे सेलेक्ट करिए जो कि आपका ढाढ़स बनाते हो, बहुत सारे दोस्त भी आपको डिप्रेस बना देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनसे आपको सावधान रहना बहुत जरूरत है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि नशे से हमेशा दूर रहिए, हमेशा आप अपने रूटीन अच्छा मेंटेन करिए, दैनिक दिनचर्या समय पे उठिए, समय पे सब काम करिए, भगवान में विश्वास करिए, समय पे अपना सारा काम करिए। उसके अलावा योग अगर आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये आपके जो सुपर कंप्यूटर, मैंने आपको बोला ना भगवान ने आपको जो सुपर कंप्यूटर ब्रेन के रूप में दे रखा है, इसको मॉड्यूलेट करने का, इसको अच्छा करने का, ये एक सबसे सुंदर और कारगर उपाय है। उसके अलावा अच्छा आप खान पान रखिए, वेजिटेरियन लीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, फल लीजिए, ठीक है, इनसे भी आपकी सेहत अच्छी होगी। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपके इंटरपर्सन रिलेशंस, पारस्परिक जो एक दूसरे के संबंध हैं, वो कभी में कटुता नहीं होनी चाहिए, उनमें नम्रता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि सामने वाला मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा दोस्त है। कभी कभी अपन एटीट्यूड गलत कर देते हैं तो अपन दोस्त को भी दुश्मन और दुश्मन को भी दोस्त समझना शुरू कर देते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जब भी कोई संकट आता है तो हम उदास हो जाते हैं कई बार, और सोचते हैं कि उदास रहने से हमारा संकट हल हो जाएगा, तो ये हमारी एक गलत सोच है या एक सही सोच है कि आदमी जब संकट में होता है तो उदासी में डूबने की कोशिश करता है?
0: देखिए सर, ये क्या है कि किसी भी संकट में उदास होना एक दिमाग का रिएक्शन है, ये तो होता ही है। जैसे खुशी में भी आपको बहुत

0: या तो खुशी मिल जाती है, लॉटरी आपके नाम से खुल गई या कोई अनास या आपको अच्छी चीज मिल गई, अच्छा सुखद समाचार गया तो खुश हो गए। और कोई संकट आ जाता है, कोई लॉस हो जाता है, कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो नॉर्मल दिमाग का रिएक्शन है कि वो उदास होता है। लेकिन उदासी कुछ समय के लिए हो, टॉलरेबल हो, और उस उदासी का अपने शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़े, तो ये उदासी सामान्य है जो कुछ दिनों में चली जाती है। जैसे कोई अपना रिलेटिव है, अपने माता पिता में से कोई दुर्घटनाग्रस्त या एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, उसकी तो रिएक्शन होगा। लेकिन इसी चीज में डिप्रेशन भी आदमी हो जाता है। इसी चीज में अगर अपन महीनों भर तक उसी चीज के बारे में सोचते रहे, डिप्रेस रहे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, उसमें खोए रहे, तो ये बीमारी में आ जाता है जिसको हम ब्रीवमेंट रिएक्शन बोलते हैं। किसी की डेथ के रिएक्शन में अगर अपन डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो ब्रीव, लेकिन अगर ये 4 सप्ताह से अगर ज्यादा चला जाता है तो फिर इसको अपन पैथोलॉजिकल ब्रीवमेंट मानते हैं, फिर अपन इसको बीमारी मानते हैं।
1: जी सर, उदासी में भी एक मंथन करने का मौका मिलता है। कई बार आदमी उदास रहता है तो बहुत मनन करता है, वो उदास उसी कारण है, सोच समझ के उसको करता रहता है, तो एक मंथन का भी एक मौका मिलता है उसको।
0: देखिए सर, ये बहुत अच्छा चीज है, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि मंथन मिलता है। बिल्कुल, उदासी में आदमी अपने आप को मंथन करता है, लेकिन मंथन पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। मंथन सुइसाइड का भी वो मंथन ही करता है, जब भी वो सुइसाइड करता है फिर सुइसाइड कर लेता है। और मंथन अच्छे एटीट्यूड में, अच्छा ट्रैक उसने पकड़ लिया तो अच्छी जगह चला जाएगा, बुरा ट्रैक पकड़ लिया।
1: मंथन भी सकारात्मक होना चाहिए,
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस बाइपोलर के बारे में हमें समझाया, जो कि एक जटिल विषय है। तो आज आप स्टूडियो में आए और आपने जो जानकारी दी और हमारे श्रोताओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की जो टिप्स दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी सुनने वालों को। और इस चीज पे गौर करिएगा, मानसिक बीमारियों को बीमारी मत मानिए, ये अंधविश्वास नहीं है, ये भी और सामान्य जैसे फिजिकल जो इलनेस होती है उसी के तरीके से। और बिना हिचक के मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास में आइए, उनको अपना समाचार, अपना अपना अपनी दुख दर्द बताइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है।
1: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से, सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी, 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ।

0: और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस महानिदेशक ने कल जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने भी चलाए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की।
1: अपने नागरिकों से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं कि आपको जल्दी ही 100% या 200% रिटर्न्स मिलेंगे, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करें या इस ट्रेडिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बीच बीच में इस तरह के मैसेज अगर आते हैं, और खास तौर से जहां भी पैसे से कोई आपके पास डिमांड आती है कि अब यदि आप इतना पैसा इसमें डालेंगे तो आपको हम ये चीज दे देंगे या इतना पैसा डालेंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, काम विदेश भेज देंगे, तो उससे आपको बचने की बहुत आवश्यकता है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। इसमें देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने देश भर में 15,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल चलाकर इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग रहने का संदेश दिया है। उन्होंने नागरिकों से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाने का आग्रह किया। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। कल नई दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। ममूटी और कार्तिक आर्यन को ब्रह्मयुग्म और चंदू चैंपियन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना की सूचीबद्ध लिस्ट से हटाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी 44 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक और संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक अधिक मूल पर दवा बिलिंग करने वाले 11 अनुमोदित फार्मेसी स्टोर्स का TMS अस्थायी रूप से

0: बंद कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने इम्पैनल्ड फार्मेसीज के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजिलॉकर परीक्षा परिणाम पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस साल से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस साल की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। NTA के अनुसार हाल ही के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट नकली पाई गई है, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 12 जुलाई से शुरू हुई ये परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसके लिए 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। परीक्षा में नकल और फर्जी परीक्षार्थियों की रोकथाम के लिए सतर्कता दल भी गठित किए गए थे। करौली आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे लेकर जिलेवासियों में उत्साह और उमंग का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले भर में विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित विकास गोष्ठी में जिले की उपलब्धियों, चुनौतियों, पर्यटन, कृषि, उद्योग, रोजगार और रेल संपर्क जैसी भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। देर सांय रणगवा तालाब आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा, जहां दीपदान और सहनाई वादन ने सांस्कृतिक माहौल को यादगार बना दिया। वहीं स्वच्छ करौली, सुंदर करौली अभियान के तहत शहर में विशेष सफाई, सजावट और रोशनी की गई। आज साइकिल रैली, बृहद वृक्षारोपण, पेंटिंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अनेक आयोजन होंगे। बांके वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा वनडे में चोटिल हुए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। RGHS में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी। 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM बैंड 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत R माधवन से बातचीत, आकाशवाणी दिल्ली से।

0: सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही हैं जया सिन्हा।
1: नमस्कार। कभी एले पैदे के मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमैद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
1: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री हूँ? थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे।
2: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
1: माधवन की खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
2: हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबी नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ही ले लीजिए जहाँ पे अजीत डोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजीत डोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
1: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
2: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
1: और आपने एक्सेप्ट किया, ये भी
2: जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
1: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
2: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो हैं वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हैं। इट इज अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
1: आप FGI से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
2: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था, जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो

0: ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मान।

0: संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
1: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाम की इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग थी। साथ में आपने फिल्म बनाई लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
0: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नम्बे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आए दिखा या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया उस सेट पे, जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से युवाओं पर इसका इफेक्ट?
0: नम्बे नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अंदलाव नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरी दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुन्द्र को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नम्बे नारायण एंड ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है।

0: एक ही मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूँ, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है। तो वो मैडी इफेक्ट कहाँ से आता है और कैसे आता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में। उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
0: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
1: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें, तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी के एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन्स या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए, तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है। वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
0: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
1: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवेड्स मनु। तो वो एक प्रोग्रेसर नहीं था, मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवेड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर सारा खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
0: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
1: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
0: The craft, like.
1: नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को। पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है। तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता है सेट पे, चाहे वो धुरेंद्र हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है। कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाना होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो वो दर्द दूर हो जाता है।
0: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
1: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम। और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, या मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
0: रिपीटिशन, दोहराव से डर लगता है?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो रेपुटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस. तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट.

0: put me down in the scene to make sure that the film works. So, मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ. ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए.
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है? आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो यार मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा.
0: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरेंद्र. एक हॉर फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है जीडी नायडू. वो हमारी इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है. तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं.
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ, या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे. कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती. जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर

0: फिल्म है, तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं।
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल। इट वॉज दैट वेरी गुड। इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट। और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों की बात थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ। उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
1: रियल लाइफ हीरोज की आप बात करें, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
0: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है। क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पर हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी।
1: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण DD न्यूज के सहयोग से किया गया।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत आर माधवन से बातचीत। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: श्रोताओ नमस्कार।
1: आप यहाँ आए इसलिए?
0: हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
1: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
0: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं। वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

सफर की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनके फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल

दुनिया के चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

पहुँचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुँचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुँचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942

नीरज के लिखे जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ

0: मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देव आनंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देव आनंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द ना आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देव आनंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देव आनंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित

नीरज ने फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुँचाते।

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।

नीरज ने तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हुक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

नीरज ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

स्वभाव कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

नीरज एक अनोखे इंसान रहे, जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।

हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

नीरज का इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने इस संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर, शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: डेस्टिनेशन है वो समुद्र।

0: होता है। तो फिल्म जो है ना समुद्र है,
1: जी
0: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का, और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने
1: को
0: दोनों
1: मिलाया है।
0: मिलाया है, और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे, और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को।
1: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों
0: जी
1: की, और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही फिल्में बनाने के?
0: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं, अभी
1: जी
0: उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है, और जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है ये, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं,
1: सबसे बड़ा
0: सबसे
1: संदेश।
0: बड़ा। जी
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म एनएफडीसी की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब ओटीटी पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक
0: जन
1: पहुंची
0: जन
1: है।
0: तक पहुंची है ओटीटी की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे, और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं
1: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी
0: मार्केटिंग
1: है
0: के लिए।
1: आप तक
0: जी
1: पहुंचने के
0: जी
1: लिए। तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है, तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का मूड के हिसाब से मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना। बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज।

0: है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, रश से शॉट ले रहे हैं,
1: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं है,
0: बिल्कुल नहीं है। और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर जरूर आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
1: आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी, जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह के जो के वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
0: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है, स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा। तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां एक स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि संसार दोनों से चलता है
0: जी,
1: है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो
0: जी।
1: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो

0: है, आपकी लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: जी, दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
0: ये होना चाहिए। वहाँ उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
1: जी,
0: अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब, तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो पुरी साहब करेंगे। पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं,

0: समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो हैं आपने स्टेक पे लगा दी हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।

0: कि करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कहनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआत की, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिका है आपको?
1: नायिकाओं में मुझे वो बेचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला।
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए,
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है। परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या? उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनकी
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
1: निर्देशक है, कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
1: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनु भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
0: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
1: बहुत अच्छी,
0: बहुत ही संचिता कलाकार है
1: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका, और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना, सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं
0: जी,
1: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम, बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है

0: तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है। तो वो ख्याल रखना, वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए, तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है। आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल

0: पहले क्या हुआ था कि पूरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड, तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
1: जी,
0: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
1: जी,
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई, है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये, यूं गुजरी अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हम
0: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में लिया,
1: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती है।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि

0: भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेन एक्टर आ रहा है
1: जी,
0: ठीक है, आपने

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आकाशवाणी सदाबहार, सदा आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम,
2: क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे। उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जी हाँ श्रोताओं, सुधीर फड़के।

0: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ पूरे 90 साल। आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज। आकाशवाणी के 90 वर्ष, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव।

0: खायो।
1: सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो, अब जैसे भाभी की चूड़ियां,
0: क्या बात है,
1: अब इस फिल्म का नाम ले ले और ज्योति कलश छलके इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है
0: जी,
1: तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता,
0: बिल्कुल रोमांचित हो जाता है, और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का।
1: अब यहाँ एक और बात मैं करूँगा इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं। सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहाँ एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है,
0: कमर जलालाबादी।

0: वो रचना।
1: आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है। हा? आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने हा? रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार,
0: क्या बात
1: है? मतलब ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है। देखिए आप, वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता।
0: बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को। 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के। और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी। और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में। तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया उसको तो कोई भुला नहीं सकता। आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण।
1: जी मनीषा जी, मैं आपको ये बता दूं कि गीत रामायण गदी माड़गुड़कर, इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि मराठी साहित्य में बड़े सम्मानित कवि हैं। इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया। और फड़के साहब और गदी माड़गुड़कर साहब के जो ये जुगलबंदी हुई
0: जी,
1: वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी।
0: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956, लगभग एक साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था। और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है
1: जी।
0: और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं। हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा है।
1: जी हाँ
0: फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि
1: जी
0: सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा बल्कि देश के प्रति,
1: जी
0: आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे
1: एक
0: फिल्म बनाई। और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म मनीषा जी चंदे से बनी है।
1: जी हाँ
0: इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी, और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी।
1: जी हाँ, और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है, श्रोताओं उनकी आवाज है। और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं, परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है, तो मित्रों मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले, इसी प्रकार की स्वर रचना करने का प्रयत्न मैंने अपने जीवन भर किया है।

दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी पाध्य का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने।

मित्रों, इस गीत को सुनने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीत गा रहे पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनकी

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: रखे पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठे तहिलो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी। जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज।
3: संगत जंगल मिन्नुं पैंगेल ताने कुंजे अदो इन तंजम मल्लेगई मंजम यंद्रवन तोलिल तुंजे अदो।
0: और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमि

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: तुम भी सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे।
0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
2: प्यादे तो ठीक है
3: जी,
2: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा। मतलब सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।

0: बेटा की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साहिब सगन बिचार दे।
1: तू क्या खड़ा हो गया यहाँ? बाबा यहाँ से।
2: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
3: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई, ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया, तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं। पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
4: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, रानी तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरी को इतना सर्विस बना दिया है, पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
3: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
5: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
3: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर
5: से दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, यह सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
3: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है।

0: उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर

निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को दो ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

0: कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।
1: गोरी का

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

की भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के

दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारतीय राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारतीय राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है, न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारतीय राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित

0: करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी

0: याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।
3: कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी, हाँ हाँ हाँ, टिक टिक टिक टिक टिक।

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाजें शंकर जयकिशन की तरफ थी।

जयदेव का सर्वदिखिया ये गीत आपने सुना, नीरज का लिखा, आशा भोसले और सखियों की आवाजें थी। रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओ नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देव बर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI की मान्यता को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। हालांकि बाद में विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 का आज से जयपुर में आयोजन हो रहा है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी करेंगी। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश की पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश भी मौजूद रहेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश से वेडिंग, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों पर्यटन संभावनाओं और वेडिंग डेस्टिनेशंस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाना है। मौसम विभाग के प्रदेश के 15 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा धौलपुर, अलवर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। हालांकि प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। इससे गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से पहलगाम और बालटाल से रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मायामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स यानी ALMM लिस्ट 2 की नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस नीति की समय सीमा में कोई सामान्य छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इस साल 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये अगर आपने फिल्म देखी है तो बता सकते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज में, नीरज के बोल थे सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, और हमने गीतकार का नाम पूछा था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक इसका जवाब भी लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें ठहरे हुए समय फ्रोजन टाइम को परिभाषित किया करती हैं, जो कि बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं, तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां इनका ये जो मैसेज है वो कहीं इधर उधर हो गया है। श्रोताओं, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज्म है जहां तारीफ से शुरू हुआ सफर सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सौंधी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है, वो पढ़ते ही जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, और लीडर फिल्म के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आंखें। दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की तरह जीने का सबब भी तो हैं। कुछ तस्वीरों में प्रेम भरी नदी सतत बहती दिखाई देती है। इस संसार में कुछ भी ठहरता पर तस्वीरों में हम जिंदा रहते हैं, जैसे कि ताज और हमारे बुजुर्ग जिनसे हमारा गहरा नाता जुड़ा है। कल को हम भी इन्हीं तस्वीरों के द्वारा याद किए जाएंगे। तस्वीरें वक्त की ऐनक हैं। अगर तस्वीरें न होती तो हम ताज का तस्वीर कैसे कर पाते।

श्रोताओं, क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं, और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश, वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज की नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है? प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की? एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है, और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने भी अपने एल्बम में सजा रखी होंगी श्रोताओं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है कि जब चाहें तब तस्वीरें निकाल सकते हैं, तो एल्बम की बात करें और मोबाइल की तस्वीरों की बात करें तो किन्हें संजोना आपको अच्छा लगता है और किन तस्वीरों को आपने ज्यादा समय तक संजो कर रखे हुआ है, तो ये बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गीत सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में और राजेश खन्ना जो शर्मिला टैगोर की तस्वीर बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारी श्रोता लिखती है, समस्त सृष्टि की चित्र प्रतिमाएं सम्राट के मुकुट में जड़े रत्न मणियों जैसी लगती हैं, जिसे देखने को आंखें आतुर रहती हैं, जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार के मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंसी के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी ओर से आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह जीवन आंखें जुल्फ झूमती मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किनकी बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गीत था शैलेंद्र का लिखा, एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी, मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं, आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं, इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं, बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है, तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल ये वर्ड्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है, तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है, आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं, बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है, जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ, एक बात है, जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है। हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुराने यादों की गठरी खुलने वाली है, सच में हमें काफी समय हो गया है हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने, आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं, और हाँ, क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं।

श्रोता लिखते हैं कि एक तस्वीर सच में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या चेहरे का अक्स नहीं होती, अक्स होना चाहिए था श्रोताओं यहाँ पर, बल्कि ये बीते हुए समय का एक ठहरा हुआ दर्पण है। ये हमें उन अनमोल पलों और एहसासों, भावनाओं और यादों के समंदर में वापस ले जाती है, जहाँ रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताजा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कायनात के राज समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहनशाह ने बनवाकर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसके आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है, जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना, चेहरों, चेहरे की झुरियां और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी हैं, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आइज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आइज आर पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोएम्स as well as prose have described the beauty of eyes. All the best. इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं, कुछ आंखें, कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहां सहेज पाती हैं, इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहां। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोताओं, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं हैं, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हों तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफर पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी खास जगह पर उतारी हो तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूं तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर है। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

अभिनेत्री मधुबाला की जो तस्वीर है वो बहुत सारे शीशों में नजर आती है श्रोताओ, इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर, बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार

0: के सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: श्रोताओ, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या तस्वीरें बनाना आपको पसंद है? क्या आप तस्वीर बनाते हैं?

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्म आया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरू सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती हैं, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती हैं, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज्म का अधूरा शेर हो, इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त। वो अल्लड़ अदाएं जो तस्वीर में भी एक मदहोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज खींची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रूम रूम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

बारह तरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, अखमार बाराबंकी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं, तो पेंटिंग जो है मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश कलर बोर्ड बहुत खरीद कर दिए, अब वो नहीं है और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आए और उसके लिए जो चीजें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है, उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम फुहार हो रही है, मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की, काली घटाओं की, रात में चांद की, तारामंडल की, सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियां, तालाब, झील, पर्वत, देवदार और वृक्ष पक्ष

0: To begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. The series is level 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout of invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open. Princess wins singles title, defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते कि पार्लियामेंट

0: सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगे। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी।

0: सत्र के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नुवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लंदन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए

0: रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर, मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से, और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की

0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
1: मुबारक हो सबको समय सुहाना।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
2: धीरे धीरे बोल
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: हो तो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे थे लाड साहब फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओ, सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सुहाना।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होट

0: बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीली गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जीने की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाहा जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर्पे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से। केवर कॉलोनी बड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहेगी।

फिल्म आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विला सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

थे ये गीत फिल्म लूफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू।

गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खा रहे हैं बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार। आप कुछ सुन रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों

0: दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
1: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
2: पिताजी?
0: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
2: आप आराम से बैठिए ना।
3: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
4: इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
3: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
4: आप जा कहाँ रहे हैं?
3: क्यों
4: नहीं पूछना चाहिए क्या?
3: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
4: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
3: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
4: क्या कह रहे हैं आप?
3: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला।

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या

0: तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों कि बलाया। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसे रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा ना कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: आप ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठ रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम ये बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो।

0: मुझे तो भूख।
1: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था?
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
2: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
1: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
2: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
1: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
1: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
1: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
1: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
2: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
1: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
1: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूँ माँ। काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
1: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
2: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगा कर करेंगे। या और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोज कर घर ले आना है।
0: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
2: ये एकाएक क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश, मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सब रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका तार मिला।
3: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
2: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
3: हाँ, मिल गया।
2: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे? कैसे गए यहाँ से?
3: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
2: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वो घर छोड़कर चले गए?
3: दूसरा क्या?
2: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
3: तुम सब समझते हो नरेश।
2: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
3: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
2: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है?
3: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
2: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
3: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
2: गए तो थे।
3: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
2: हुई थी।
3: तुमने क्या कहा था?
2: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
3: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
2: आप तो यह क्या बातें हुई?
3: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं,

0: आपके लिए मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
1: उन्होंने क्या कहा?
0: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया।
1: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
0: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हज़ार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ।
0: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था।
0: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
0: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
0: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
0: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अभी मैं बहस में पढ़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
0: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
0: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
0: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रही हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाए, कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
0: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
0: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
0: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है। अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ?
2: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
2: अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
2: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सुन मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
2: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं माँ? कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
2: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी

0: होगा माँ?
1: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
1: इतने रुपए लगेंगे?
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
1: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
1: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
1: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
1: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
1: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा।
1: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
1: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ सोच ही लिया है।
1: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
1: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
1: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
1: सोचना क्या है?
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
1: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
1: हाँ शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
1: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
0: हाँ रुपए तो लगेंगे।
1: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
1: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
1: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
1: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
1: नरेश।
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
1: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
1: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
1: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: और क्या सोचना पड़ेगा?
1: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
0: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें? अपनी तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया, भैया, भैया, क्या हो गया भैया?
0: क्या
2: हो गया?
0: क्या हुआ क्या नरेश?
2: चलकर देखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया, पंखे से छोड़ गई है।
1: क्या किया बेटी तूने, क्या किया तूने, क्या किया?
0: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है।
3: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ, लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है, मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। मां मैं जानती हूं मौत

किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता ना। देखो, मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई है, क्यों लड़की हुई। लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ, तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ। अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आखिरी सब तो पिछले बार घट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए। हमें माफ कर दीजिए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। कृष्णा नहीं रही, माँ मरना सुन्ने है।
1: माँ मरना सुन्ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: आप मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? क्या उसने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
3: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका है सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: लग रहा है? है
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल। मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना मुझे, सुनाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैं नहीं रचाई। कहते और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है उसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी। हाँ,
2: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि

0: साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
0: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
0: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था। मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी, तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह, फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की, 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और
0: पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा नाम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम
1: परांजपे जी एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है, तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओह डियर, चलो मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए, वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने या मराठी में कुंकू, हाँ उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ, लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा पांगर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड,
1: हाँ,
0: मछुआरी का, हाँ तुलसा नाम की, हाँ बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था, वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकनिम खाना पूना में बैठ के वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए, रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाडा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोळी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू

0: हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनकी वगैरह वगैरह, और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ, और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा, और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो, है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: है
0: कि रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी। शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का, और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, माँ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह, बड़ा प्यारा।
0: तो हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं, कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा, और फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से, और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, ये तो इतनी भव्यता के साथ शादी की गई
0: जी, और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना की बात है,
0: लेकिन
1: ये वाला जिक्र आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है, और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों नहीं,
1: फिल्म में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, मुझे लगता है उसी जज्बात को वो
0: आगे बढ़ा। क्या बात,
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ा। बात

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब बड़े साहित्यकारों को पढ़ रखा था,
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट, और ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी, नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स,
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिड़क की भी जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा, तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो चार साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का, वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं, और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे।

0: हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे। हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भड़ैनी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
1: जी
0: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
1: जीवन शैली का,
0: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे। और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
1: हाँ, ये हाँ, बड़ा मजेदार
0: हाँ, है। और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी, और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ, फिल्म टेक्निक सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: हाँ,
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
1: शायर
0: गाने
1: जी,
0: वाले हाँ? तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। सुरई की नोक ही कहते हैं ना,
1: तो
0: सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा रही है, और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना। तो उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ।
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है।
1: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा है, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
0: जी, देखो वो साथ साथ होता रहा है,
1: कह के सुनाते हैं।
0: हाँ।
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है।
0: हाँ।
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: लेकिन दो बातें जो है वो हाँ। मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी।
0: हाँ।
1: एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली, ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है। हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते।

0: लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था, हा? और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो मैंने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जा। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला थी डेकन जिमखाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांच्या गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
1: जी।
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट, और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था, क्योंकि शुद्ध भाषा और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म,
1: पूरा याद है, शिव तांडव स्तोत्र
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना, तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंके कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे
1: भारी होते
0: करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो तो आप ऑडिशन के, मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह, ओहो मायूस हुए सब लोग, तो नहीं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए, और
1: वाह।
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणा एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो।

0: मैंने कहा अब तो दे सकती हो, तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना, फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से, हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो हाँ। बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम, और बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन

0: जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमीनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम। बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर। उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा, हेलो, मुझे गर्दी माडगोलकर के घर का फोन दे सकती है?
1: वाह वाह वाह।
0: तो दो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा, शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा, ताई, ताई बोल रही है? टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से, मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना?
1: मैं सर,
0: हाँ हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
1: बेचारी
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है, नाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा, अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह,
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा, फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं, यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, हाँ, गर्दी माडगोलकर, हाँ, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी,
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदीमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षान से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं, जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर एक पहा किती तरी थोर, अगर उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आकर वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है, और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है हर एक के ऊपर, लिखता है मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षान से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे,
0: अरे वाह वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी का शाप, पत्ते नगरी, पत्ते नगरी पहले था पक्षान से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेक्कन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है, दोनों तरफ इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे, वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर हाँ हाँ ये शांति दूत बनेगा फला आदम का ये वो, और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माय स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहां

0: पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी। और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी का शाप, सरों की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू का शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे। उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: वो एक लड़की दिखी,
0: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
1: पत्ते
0: हाँ,
1: से फैसला करते हैं कि अच्छा, जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो
0: अच्छा,
1: जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं। और वो दो बुस्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बिल्कुल बारी बारी से, और फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बद्दूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में, जिस दौर की
0: कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद?
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार,
1: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते।

चकित भए तुगरे नगरे काले घोडे दौड़ पड़े काले घोडे दौड़ पड़े काले घोडे दौड़ पड़े काले घोडे दौड़।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण दुगड़ेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी,
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
0: तो वो अखबार में विज्ञापन देखा।
1: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है तो।
0: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। कहते कैसे कैसे, एक महीने का

0: कि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। सर एक महीने में शादी आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके वगैरह वगैरह बातें होगी। एनी वे तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर, और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया पधारा NSD में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात है।
0: तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब सात जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटास्टिक, यूज अ फैंटास्टिक टीचर। बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
0: नहीं नहीं नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए। आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगु मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो होती
0: है, हाँ, कालिदास की पत्नी रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ हाँ हाँ करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया। हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी,
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास में थे, और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के इसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने, मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, वे पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति
1: जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फुलवारी।

नमस्कार। फुलवारी सुनने वाले सभी नन्हे श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त पायल हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पेड़ ना हो, नदियाँ ना हो, पक्षियों की चहचहाहट ना हो, तो

सारी दुनिया कैसी होगी? प्रकृति केवल आसपास की हरियाली नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात पर चर्चा से करते हैं कि प्रकृति को संवारने से हम अपने जीवन को कैसे निखार सकते हैं। बच्चों, प्रकृति ईश्वर का दिया गया वो अनमोल तोहफा है जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। हमारे जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो सब हमें एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं, जैसे पीने का पानी, खाना, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। तो ये कहना कि प्रकृति के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता गलत नहीं होगा। इसके अलावा प्रकृति हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करती है। प्रकृति की सुंदरता, हरी भरी वादियां, पेड़ों की छांव, पानी का कलकल स्वर, हवा की सरसराहट हमारे तनाव को भुलाकर हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। प्रकृति का संतुलन हमारे जीवन के साथ साथ इकोसिस्टम का संतुलन, इकोसिस्टम में भी संतुलन बनाए रखने का काम करता है। प्रकृति का संतुलन हमारे जीवन को आसान व सुंदर बनाता है, लेकिन आज के समय में मनुष्य ही प्रकृति का दोहन करने में लगा हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। लोग अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं ताकि ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा सके, लेकिन हमारी धरती माँ इससे परेशान भी है और नाराज भी। इन्हीं कारणों से साफ हवा और पानी भी प्रदूषित हो रहे हैं। बच्चों, जो संसाधन धरती पर जीवन के लिए अहम हैं, अगर उन पर ध्यान ना दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा। आज हम प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन स्थिति और भी बदतर हो सकती है, जैसे कि गंभीर जल संकट हो सकता है। अगर भूजल इसी तरह निरंतर गिरता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पीने के पानी के लिए युद्ध होगा। वनों की कटाई से और बढ़ते प्रदूषण के कारण धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अगर इस स्थिति को संभाला नहीं गया तो मौसम चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिसकी वजह से अत्यधिक सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाएं बढ़ जाएंगी। जल की कमी से उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी और कृषि उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा। इससे दुनिया भर में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारियां और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का होना भी आम बात हो जाएगी। पेड़ों व जंगलों के कटने से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। बात अगर ऊर्जा की करें तो ऊर्जा संकट अगर हुआ तो उद्योग व परिवहन भी ठप हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर अब भी हम नहीं संभले और प्राकृतिक संसाधनों की ओर, प्रकृति की ओर अगर अपना रवैया नहीं बदला तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बेहद जरूरी है। बच्चों, देश का विकास जरूरी है, पर जरूरत है तो बीच के रास्ते की, एक ऐसे विकल्प की जहां हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की राह पर चल सकें। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें व्यक्तिगत प्रयास भी करने होंगे। आगे बढ़कर समाज में सफाई रखने का प्रयास करें और दूसरों की प्रेरणा बने। अपने फ्रेंड्स व फैमिली में जागरूकता फैलाएं, उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझाएं और अशिक्षित वर्ग के को भी इस बारे में शिक्षित करें। प्लास्टिक का यूज न खुद करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। पानी की हर बूंद की अहमियत समझें, जरूरत के मुताबिक पानी को काम में लें, वेस्ट ना करें। बिजली की खपत कम करें, जैसे कि जब आप कमरे से बाहर निकल रहे हो तो ध्यान रखें कि आप लाइट व पंखे बंद करें। सबसे अहम बात, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि वो हमें खाना और ऑक्सीजन देते हैं और साथ ही हवा भी साफ रखते हैं। तो देखा बच्चों, हम सब अपने अपने तरीकों से, प्रयासों से प्रकृति के संरक्षण

0: में उसको संवारने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब ये संकल्प लें कि हम प्रकृति के शोषक नहीं बल्कि सच्चे पोषक बनेंगे, हर पेड़ को मित्र मानेंगे, हर बूंद का सम्मान करेंगे और अपनी धरती को हरा भरा बनाएंगे। क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराती है तभी हमारा भी जीवन निखरता है। इसी के साथ बच्चों, आज आपके साथ मैं एक बातचीत शेयर करना चाहूंगी, जो हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे जुड़े हैं और उनसे हमने इसी संदर्भ में बातचीत की है। आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है।
1: कुछ सुपर स्मार्ट बच्चे हैं जिनके साथ हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट और उसका कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका?
2: राव्या।
1: आपका?
2: आदि।
1: और आपका?
3: रायन।
1: अरे वाह, बहुत अच्छे नाम है आप लोगों के। चलो हम बात करते हैं। अच्छा, आप जानते हो एनवायरनमेंट क्या होता है? हाँ बताइए। आदि आप बताओगे? बताओ।
2: एनवायरनमेंट होता है जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे।
3: एनवायरनमेंट होता है जब पेड़ और बहुत सारे जानवर रहते हैं और पेड़ उगते हैं उधर।
1: वेरी गुड। और रायन आप बताओ।
4: हमारे आसपास के जगह जिसमें जानवर या लिविंग चीज होते हैं और नॉन लिविंग चीज होते हैं, उनको इसे एनवायरनमेंट कहते हैं।
1: ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि एनवायरनमेंट में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
2: मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, मुझे जानवर अच्छे लगते हैं और मैंने कविता में भी सुना कि सच्चा दानी पेड़ पौधे फूल फल और बादल कहा गया है, क्योंकि वो सबको निस्वार्थ भाव से जल फूल फल और फूल देते हैं।
1: अच्छा, वेरी गुड। और आपको क्या पसंद है रायन एनवायरनमेंट में?
4: मुझे एनवायरनमेंट में सब कुछ पसंद है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अब मुझे ये बताओ कि हमारे लिए पेड़ क्यों इम्पोर्टेंट हैं?
4: पेड़ हमारा ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलेट करते हैं।
2: पेड़ हमको लकड़ी देता है।
1: अच्छा, खाना बनाने के लिए। वेरी गुड।
2: पेड़ हमें बहुत सारे फल फूल देता है।
1: बेसिकली पेड़ हमें खाना देते हैं, है ना? चलो वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा?
2: हमारा जो जीवन है वो बहुत ही असंभव हो जाएगा।
1: वेरी गुड।
4: अगर हम पेड़ काटेंगे तो फिर हमारे ओजोन लेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ती जाएंगी, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है।
1: बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता है, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और हमारा जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये मालूम है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब होती है?
4: हाँ।
1: तो हम प्लास्टिक का यूज कैसे कम कर सकते हैं?
2: हम प्लास्टिक का जो यूज होता है हम उसे कम कर सकते हैं, और उसके अलावा हम घर पे पेपर बैग्स का प्रयोग कर सकते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छे। और
2: हमको प्लास्टिक उधर इधर फेंकना नहीं चाहिए और हमको उसको रिसाइकिल करना चाहिए।
1: वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अच्छा आपने सुना है कि बहुत सारे आज अभी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, विश्व जल दिवस, है ना? तो हम अपने आसपास ये कैसे करें कि हम थोड़ा पानी वेस्ट कम करें, और हमारे से पानी वेस्टेज हम अपने लेवल पे कैसे कम कर सकते हैं?
4: हम सबको बता सकते हैं कि हमें पानी का इस्तेमाल सही करना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, मतलब हम आसपास अवेयरनेस फैला सकते हैं। और हम अपने लेवल पे और घर में क्या कर सकते हैं?
2: नहाते समय हमको बकेट का इस्तेमाल करना है, शावर का नहीं करना।
1: वेरी गुड। और
2: हम जो बारिश का पानी हो सकता है उसे एक गड्ढे में कंजर्व कर सकते हैं, जिससे कि वो आगे जाके काम आए।
1: बहुत अच्छी बात है, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए और हमें अपने घर में एक एक्स्ट्रा टैंक बना के बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको रीयूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जैसे बच्चों जो आरओ का पानी होता है हम उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं, उसको हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर

0: सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे को नहीं पता था कि आप लोग इतने स्मार्ट हैं, आपको तो सब पता है। तो फिर अब हम इस आज एक प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे पानी भी बचाएंगे और एनवायरनमेंट को हमारी तरफ से कोई नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है,
1: ठीक है,
0: थैंक यू।
2: इसी के साथ हमारे साथ एक और नन्ही सी बच्ची जुड़ी है जो हमें एक कविता के माध्यम से संदेश देना चाहती है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।
3: नमस्ते, मेरा नाम नव्या भनोट है, मैं केजीई में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बना, छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, प्रदूषण दूर हटाते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद।
2: इस सुंदर कविता के साथ हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम में एक छोटे से विराम के क्षण पर। तो आइए बच्चों, आपका कराते हैं मनोरंजन, लेकिन उससे पहले जानते हैं पहेली टाइम की आज की पहेली। आज की पहेली है हरा आटा लाल पराठा, मिलकर सब सखियों ने बांटा। आप सोचिए इसका उत्तर, तब तक आइए सुनते हैं।

इसी के साथ वक्त है अब आज की कहानी का। आज की कहानी का शीर्षक है 100 साल का मौन। काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक घंटा था जो 100 साल से नहीं बजा था, क्योंकि उसे बजाने के लिए पाप रहित हाथ चाहिए थे। कहते हैं औरंगजेब के समय में जब मंदिर टूटा तब पुजारियों ने एक बड़ा पीतल का घंटा कुएं में छुपा दिया। जब अहिल्याबाई ने मंदिर फिर से बनवाया तो घंटा निकाला गया। महंत ने उस पर संस्कृत में खुदवाया, ये घंटा वही बजाएगा जिसके मन में चोरी झूठ व हिंसा ना हो। लोग आए, राजा आए, साधु आए, सबने रस्सी खींची, घंटा हिला तक नहीं। धीरे धीरे लोगों ने कोशिश छोड़ दी। घंटा मंदिर के कोने में लटकता रहा और धूल जमती रही। बच्चे पूछते, बाबा ये बचता क्यों नहीं? तो पुजारी कहते, पाप रहित हाथ कलयुग में कहाँ। एक बार माघ की अमावस्या को काशी में भारी भीड़ थी। उसी रात गांव गाजीपुर से माधव नाम का एक चोर काशी आया। वो 15 साल से चोरी करता था, पहले मजबूरी में फिर आदत की वजह से। उस रात उसने सोचा, विश्वनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ में किसी सेठ की थैली मिल जाएगी। वो घाट पर नहाया भी नहीं और सीधे मंदिर की गली में घुस गया। भीड़ में धक्का मुक्की में एक बूढ़ा व्यक्ति गिर गया। माधो ने उसे उठाया तो देखा कि उसकी लाठी टूट गई है। माधो ने तुरंत अपनी धोती फाड़ी और लाठी बांध दी। बुजुर्ग व्यक्ति प्रसन्न होते हुए बोला, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। माधो हंसते हुए बोला, मेरा भला भगवान नहीं करेगा। फिर वो मंदिर पहुंचा, वहां पर आरती चल रही थी। पुजारी ने कहा, आज कोई पाप रहित हाथ है तो एक घंटा बजाकर दिखाए। तो भीड़ हंस पड़ी। माधो कोने में खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसने सोचा, मैं तो पापी हूं पर घंटा देखूं तो सही। वो धीरे धीरे घंटे के पास गया, रस्सी पर हाथ रखा, तभी पीछे से आवाज आई, मत छू। पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी सी 7 साल की लड़की वहां खड़ी थी, मैली सी फ्रॉक पहने और हाथ में मिट्टी का दिया लिए। लड़की बोली, तुम बजाओगे तो बजेगा नहीं, सब हंसेंगे तुम पे। माधो बोला, तू कौन है? लड़की बोली कि मैं तो गंगा किनारे फूल बेचती हूँ, मेरी माँ बीमार है, आज दिया चढ़ाने आई हूँ। पंडित ने कहा था कि घंटा पापी से नहीं बचता। माधो ने पूछा, तू पापी है? तो लड़की हंसी, हाँ कल मैंने एक बेर चुरा कर खाया था, माँ की दवा के पैसे नहीं थे। तो ये सुनकर माधो का हाथ रुक गया। उसने पहली बार अपने जैसा किसी को देखा था। आरती खत्म हुई और भीड़ छटने लगी तो लड़की ने दीपक जोड़कर शिवलिंग के पास रखा और लौटकर माधो के पास आकर बोली, तुमने उस बूढ़े की मदद की थी ना, मैंने देखा तुम्हें, वैसे तुम चोर हो ना? माधो आश्चर्य से एकदम आंखें फैलाकर बोला, पर उसका तो सिर भी झुक गया। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो दोनों मिलकर खींचते हैं, पाप आधा आधा बढ़ जाएगा। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया, दोनों ने मिलकर रस्सी खींची। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर घंटा हल्का सा हिला, धूल झरी। दूसरी बार खींचा तो एक धीमी सी

पूंच निकली, टन। तीसरी बार दोनों ने पूरी ताकत लगा दी तो घंटा बज उठा। 100 साल बाद काशी का वो घंटा बजा। आवाज ऐसी गूंजी कि कबूतर उड़ गए। पुजारी थाली छोड़कर दौड़े और जोर से चिल्लाए, अरे किसने बजाया ये घंटा? माधु इतनी हलचल देखकर डर गया, वो भागने लगा। लड़की ने उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, भागो मत। पुजारी ने देखा कि ये क्या, एक चोर है और एक फूल वाली। वो बोला, असंभव, तुम दोनों तो पापी हो। माधु हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं चोर हूं, मैंने जीवन में सैकड़ों जेबें काटी हैं, आज भी चोरी करने के इरादे से ही आया था, पर इस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली पाप आधा आधा बांट लेते हैं, तो मैंने सोचा पाप बांट सकते हैं तो शायद पुण्य भी। लड़की ने बोला, मैंने बेर चुराया है। पुजारी चुप रहा। इसके बाद वहां सारे महंत आ गए, उन्होंने घंटा देखा, फिर रस्सी देखी और बोले, शास्त्रों के अनुसार पाप रहित हाथों से ही घंटा बजना था। पाप रहित का मतलब निष्पाप होना नहीं, पाप स्वीकारना भी है। पाप छुपाने में हाथ भारी हो जाते हैं, तो हल्के हाथों से ही घंटा बजेगा। उस रात महंत ने नियम बदल दिया कि जो अपने पाप को स्वीकारेगा वो ही ये घंटा बजाएगा। पहले दिन कोई नहीं आया, फिर हलवाई आया और उसने माना कि उसने मिलावट की थी। फिर घंटा बजाया तो घंटा बज गया। फिर एक छात्र आया और उसने कहा कि मैंने माँ से झूठ बोला, उसने भी घंटा बजाया। तो लोग पूछने लगे कि अब रोज घंटा कैसे बजता है? तो पुजारी हंसकर बोले, काशी में अब लोग पाप छुपाते नहीं, मान लेते हैं। 100 साल का जो मौन था वो इसलिए नहीं था कि दुनिया में कोई पवित्र नहीं था, मौन इसलिए था कि सब खुद को पवित्र समझते थे। जिस दिन हम अपने अंदर की चोरी स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन हमारे हाथों से घंटा बज सकता है, क्योंकि हमारा मन व हाथ हल्के हो जाते हैं। बच्चों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है उसके अंदर परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। अहंकार मन को भारी बना देता है। जब हम खुद को पूर्ण मान लेते हैं तब सीखने, सुधरने व आगे बढ़ने के द्वार बंद हो जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। बच्चों, आज 19 जुलाई हमारे देश के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिन है। 19 जुलाई को हर साल बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग व स्वतंत्र नीतियां होती थी और उनका उद्देश्य आधिकारिक लाभ सुनिश्चित करने तक ही सीमित था, जो कि जायज सी बात थी क्योंकि इन बैंक्स के अधिकतर शेयर होल्डर्स कुछ गिने चुने अमीर लोग यानी कि पूंजीपति थे, जो अपने हितों की रक्षा के साथ निजी हितकारियों को ही बैंक सेवाओं व सुविधाओं का लाभ पहुंचाते थे। ऐसे में गरीब, कमजोर वर्ग व गांव के लोगों को बैंक किस चिड़िया का नाम है ये पता ही नहीं था, अतः वो दिन प्रतिदिन सेठ साहूकारों व महाजनों के सूद के नीचे दबते चले जा रहे थे। बच्चों, असली भारत गांव में बसता है ये तो हम अमूमन सुनते ही हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले बड़े दुख की बात है, मगर ये कहा जाता था कि किसान कर्ज में जन्म लेता था और कर्ज ही छोड़कर चला जाता था। फलस्वरूप पूंजीपति और धनवान होते गए और गरीब और पिस्ता चला गया। इसी असंतुलन पर काबू पाने के लिए बैंक, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करके उन्हें देश के विकास प्रवाह में शामिल किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कि हर वर्ग का नागरिक बैंक सेवाओं व सुविधाओं का लाभ उठा सके। 19 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो कि तब तक बड़े औद्योगिक घराने ही चला रहे थे। इन बैंक्स में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ

बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल थे। क्लास बैंकिंग की जगह मास बैंकिंग के लिए ये कदम उठाया गया था, पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका भी हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। शाखाओं का विस्तार हुआ। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का जाल ऐसा बिछ गया जिससे कि करोड़ों लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जा सका। इससे कृषि व छोटे उद्योगों को काफी हद तक बढ़ावा मिला। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए और इन सब की वजह से ही बच्चों हमारा देश वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन पाया। तो ये थी राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के पीछे की कहानी। इसी के साथ बच्चों कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त है मनोरंजन का। आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इसी के साथ इजाजत लेना चाहूंगी बच्चों, जल्द ही मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

अभी बच्चे फुलवारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम

क्या खूब कहा है, नजर की जुबा से बयां होते देखा, नजर की जुबा से बयां होते देखा, मौन का ज्ञान और अज्ञान दोनों के साय में रोते देखा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही हटके है। आज हम बात करने वाले हैं सन्नाटे पर, यानी कि मौन पर। वैसे तो हम युवाओं को चुप रहना पसंद नहीं है, हमें तो बस बोलना, चैट करना और रील्स बनाना पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मौन के दो बिल्कुल उल्टे मतलब हो सकते हैं? जी हाँ, मौन के दो अर्थ हो सकते हैं। या तो इंसान बहुत कुछ जानता है या फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने।

इग्नोरेंट। जब हमें किसी टॉपिक की नॉलेज नहीं होती तो चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी होती है, क्योंकि बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बड़ा ही मैच्योर और क्लासी है, वो है बहुत कुछ जानना, यानी कि विजडम। जब इंसान इतना समझदार हो जाता है कि उसे बेमतलब के आर्गुमेंट्स का कोई फायदा नहीं दिखता, तो वो मौन चुनता है। हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता। इस गहरे मौन पर किसी ने क्या खूब लिखा है, खामोशी से बनाते हैं पहचान वो, खामोशी से बनाते हैं पहचान वो, जुबां से जो कभी दावेदारी नहीं करते। कभी कभी यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप सब कुछ जानते हुए भी शांत रहते हैं तो वो आपका अल्टीमेट पावर मूव होता है। तो आज से जब भी कोई चुप हो तो उसे तुरंत जज मत कीजिए। क्या पता वो अज्ञानी हो, या फिर क्या पता वो ज्ञान का समंदर लिए बैठा हो। जब क्लास में प्रोफेसर अचानक ऐसा सवाल पूछ ले जो सिलेबस के बाहर का हो, तब जो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, वो अज्ञानता का मौन है। वहाँ चुप रहना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि नो नॉलेज नो टॉक। उस मौन का क्या जो एक मैच्योरिटी से आता है। जब आप लाइफ में इतने वाइज हो जाते हैं कि आपको हर एरे गेरे क्वेश्चन का आंसर देना टाइम वेस्ट करना लगता है, जब आप सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं, उसे कहते हैं अल्टीमेट मून। इस गहरे मून के लिए कहा गया है, वक्त पर बोलना भी एक हुनर है दोस्तों, वक्त पर बोलना भी एक हुनर है दोस्तों, मगर वक्त पर खामोश रहना कमाल का हुनर है।

क्या आप जानते हैं कि अब आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। नए आधार ऐप की मदद से आप घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए केवल 75 रुपए में एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि लोगों को पढ़ाई या काम के दौरान शहर बदलना पड़ता है, ऐसे में उन्हें अपने आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करवाने की जरूरत होती है। पहले इसके लिए आधार केंद्र जाना पड़ता था, जहाँ लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। इससे लोगों का समय भी बर्बाद होता था और काफी परेशानी भी होती थी। इस समस्या को ठीक करने के लिए भारत सरकार की एजेंसी यानी कि UIDAI ने पुराने MA आधार ऐप को 30 जून 2026 से बंद कर एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पहले ही गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया था। नए ऐप में कई नए फीचर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आधार से जुड़े कई काम अब घर बैठे किए जा सकते हैं। नए आधार ऐप में आपकी जानकारी पहले से ज्यादा सेफ है। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन जैसी फीचर्स दी गई हैं, जिसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस फास्ट और इजी हो गया है। इस फीचर की मदद से अब आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करना भी काफी आसान हो गया है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि नए आधार ऐप में एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में नया आधार ऐप डाउनलोड करके उसके सेटअप्स पूरे करने होंगे। सेटअप पूरा करने के बाद ऐप को खोलें। उसके बाद सबसे पहले आपको मास्क्ड आधार कार्ड दिखाई देगा। इसके नीचे दिए गए सर्विसेज ऑप्शन पर टैप करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आधार से जुड़ी सभी ऑनलाइन सर्विसेज दिखाई देंगी। यहां एड्रेस अपडेट ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद आपको पुराना एड्रेस दिखाई देगा और उसके नीचे एड्रेस अपडेट करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन में आप अपने एड्रेस प्रूफ की फोटो अपलोड करके नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप अपने परिवार के किसी सदस्य के आधार कार्ड की मदद से भी एड्रेस बदल सकते हैं। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 75 रुपए की फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें। पेमेंट होने के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी कि SRN मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने एड्रेस अपडेट का स्टेटस अभी भी ट्रैक कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट होने में लगभग 15 दिन का समय लग सकता है।

करते हैं, लेकिन इनकी कथित शादी करके ये दिखाने की कोशिश की कि रोबोट्स कितना आगे चले गए हैं। इसी बीच रूस की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। मॉस्को में पहली बार ह्यूमनॉइड रोबोट्स की शादी की गई। इस समारोह में दोनों रोबोट्स ने एक दूसरे से वादे किए, शादी के ब्रेसलेट बदले और उन्हें आधिकारिक तौर पर रोबोट कपल घोषित किया गया। यह शादी रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित पुश्किन लाइब्रेरी में हुई। शादी करने वाले रोबोट्स का नाम रॉबर्ट और मटिल्डा है। इन दोनों को इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम SPIEP 2026 में भी दिखाया गया। रोबोट को एक ऑफिस कर्मचारी और ब्लॉगर की तरह तैयार किया गया, जबकि मटिल्डा का डिजाइन एक बैले डांसर से प्रेरित है। समारोह के दौरान दोनों रोबोट्स ने AI की मदद से तैयार किए गए डायलॉग्स के जरिए शादी की शपथ ली। अंगूठी की जगह दोनों ने एक दूसरे को ब्रेसलेट्स पहनाए। दिलचस्प बात ये रही कि शादी के ब्रेसलेट रोबोट डॉग लेकर आया और समारोह की संचालिका ने इसके बाद दोनों को रोबोट पति पत्नी घोषित कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या अब रोबोट सच में शादी करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कानूनी शादी नहीं थी। इसका मकसद लोगों का ध्यान ह्यूमनॉइड रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक की तरफ अट्रैक्ट करना था। इस आयोजन के पीछे रोबोट बनाने वाली कंपनी यानी कि IT इंपीरियल थी। कंपनी का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम लोगों को ये समझाने में मदद करते हैं कि आने वाले टाइम में रोबोट सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई काम कर सकेंगे। हालांकि अभी इस तकनीक को आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने में टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, आज के ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब भी महंगे हैं और ज्यादातर डेमो रिसर्च या खास फैक्ट्री के कामों के लिए यूज

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन यानी कि 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी कि सरकारीकरण किए जाने की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। 1969 से पहले अधिकांश बैंक बड़े निजी उद्योगपतियों के हाथों में थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और आम जनता तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाती थी। इसके राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करना, ताकि आम जनता तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सके। कृषि एवं छोटे उद्योगों और कमजोर वर्गों को आसानी से और उचित दरों पर लोन उपलब्ध कराना। बड़े उद्योगपतियों द्वारा धन के दुरुपयोग और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। और आम आदमी में बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना और यह विश्वास दिलाना कि उनकी जमा पूंजी सुरक्षित है। इस निर्णय ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था की तस्वीर बदल दी और इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लक्ष्यों से जोड़ दिया। इसके द्वारा ग्रामीण विस्तार, ऋण की उपलब्धता, जनता का भरोसा, आर्थिक असमानता में कमी आदि कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

अभी हमारे युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना

0: चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गोवा ने आज पोंडा में सातवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट तीन बार गोवा विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिलीज किए जाएंगे। शाम 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्राम भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुन पाएंगे चर्चा मिर्ची की खेती एवं नाशी जीव प्रबंधन। साथ ही एक भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन एवं कीट रोग नियंत्रण। जानकारी देंगे श्री बच्चू सिंह, सहायक कृषि अधिकारी अलवर। साथ ही साथ किसान भाइयों को जानकारी एक और दिलवाई जाएगी संतुलित पादप पोषण के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। इसके अलावा किसान भाइयों को मौसम और बाजार भाव भी बताया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30। रात्रि 8:15 लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। रात्रि 9:45 हिंदी में और 9:00

अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10 बजे आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

और लीजिए अब सुनिए कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। कल सवेरे 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार आप सुन पाएंगे सवेरे 6:05 पर। 6:35 पर रामचरित मानस गान होगा। संगीत सरिता आप सुन पाएंगे 6:45 पर। सवेरे 7 बजे नमस्कार अलवर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 7:30। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से लिखा जाएगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 8:15 पर। 8:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1331वां भाग आप कल सुन पाएंगे। सवेरे 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लिखे जाएंगे। 9:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

कल शाम 5 बजे बहनों के लिए महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 बजे आप सुन पाएंगे युववाणी कार्यक्रम। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

कल शाम 7 बजे ग्राम भारती कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुन पाएंगे चर्चा ग्रीष्मकालीन सब्जियों में कीट प्रबंधन, साथ ही किसान भाइयों को एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, खरीफ सब्जियों से लाभ कमाएं, ग्राम लीली की बगीची मालाखेड़ा के प्रगतिशील किसान दारा सिंह सैनी विनोद सैनी से भेंट वार्ता, साथ ही किसान भाइयों को सब्जियों में जैव उर्वरकों का उपयोग व लाभ के बारे में बताया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे शाम 7:30 बजे।

कार्यक्रम का पहला गीत कुदरत फिल्म से है, आवाज किशोर कुमार की है। गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और इस गीत के लिए संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

जुर्माना फिल्म का ये गीत है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

जुर्माना फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और इस गीत के लिए संगीत दिया था आर डी बर्मन।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लेकर।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना। आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायक कार्य करेगी

0: और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से

0: तो कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: संसद के मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आज की सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए सहयोग करेंगे। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त करने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने और विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे निवेश प्रोत्साहन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले 2.5 वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें MSME, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य अधिकारियों को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने और इनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यकता होने पर इन्हें रेफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव आज जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष से पिछले 24 घंटों में हुए सामान्य और सिजेरियन प्रसव और उनकी वर्तमान हालत के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव के बाद अगले 24 घंटे धात्री महिला की गहन निगरानी रखने और उसके पोषण का समुचित ध्यान रखने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों को आवश्यक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान सहित केंद्र और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शी क्रियान्वयन और अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बालोतरा में निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए श्रम विभाग की ओर से कल से 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें श्रमिकों के निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। ये शिविर विभाग के स्थानीय कार्यालय में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार के फिर गति पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, धौलपुर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। आज दोपहर बाद कोटपुतली बहरोड में कुछ स्थान पर बारिश हुई। इससे आमजन को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। करौली जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिले भर में साइकिल रैली, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली स्थापना दिवस पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि ये जिला आस्था, इतिहास और प्राकृतिक वैभव की अनुपम धरोहर है। उन्होंने कहा कि करौली निरंतर विकास, समृद्धि और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम हम सभी को हमेशा देश सेवा और राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करता रहेगा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मियामी स्टेडियम में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी।

0: बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। करीब 34 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से किया। गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता सेल्फी विथ रेलवे स्टेशन के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री बिरला ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण किया और राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे। जिले में बीते दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी नामांतरण, भूमि रूपांतरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला। वहीं नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में लोग भूमि रूपांतरण, आवासीय और व्यावसायिक पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेते नजर आए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पिछले दिनों विकसित भारत ग्राम योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम खिजूरी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चारागाह भूमि पर पीपल पूजन और पौधरोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आंध्र प्रदेश के तिरुपति से और ब्यावर के मसूदा से राज्यस्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। पिछले दिनों सवाईमाधोपुर करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ और HPCL के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत HPCL के पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेयरी के MD सुरेश कुमार सेन ने बताया कि सवाई माधोपुर और करौली जिले में HPCL के 75 पेट्रोल पंप हैं, जहां 25 पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के विभिन्न उत्पाद के आउटलेट, कियोस्क और बूथ लगाए जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले महीने राज्य सरकार से दिशा निर्देशों के बाद परीक्षण कर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के कुसाय और खंडीप तक नहरों में भरपूर पानी आने के बाद क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर देखी गई। हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून के चलते रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन का काम 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है। इसके पहले जून महीने के अंतिम सप्ताह में भारी संख्या में पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। मॉनसून के दौरान रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने और वन्य जीव संरक्षण को लेकर वन विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वन क्षेत्र में वन्य जीवों की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से बाघ और अन्य वन्य जीवों की गणना का काम किया जा रहा है। वन्य जीवों की गणना और सुरक्षा के मद्देनजर परियोजना क्षेत्र में 300 पॉइंट निर्धारित कर 600 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। जिले में मॉनसून की बेरुखी के चलते तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी और उमस का वातावरण बना हुआ है। बरसात नहीं होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं खरीफ की फसलों को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इसी के साथ सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर।

0: मेरू पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रो मानसून सत्र कालसू सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगड़ा दलाऊ सदन ने सुचारू रूपू चलाबारी अरज करी गई। नीति आयोग री कानियो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य री श्रेणी माए थौड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलावारी लगातार मॉनिटरिंग करबा और सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया। और प्रदेश में मानसून एक बार फेरू रफ्तार पकड़ सके है आज 15 जिला में आंधी और बारिश रो अलर्ट। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। संसद रा कालसू सरुवेरिया मानसून सत्रू पहली आज सरकार संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक री अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करी। बैठक रे पछे मीडियाओं बातचीत रे दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षू अरज करी के वे मानसून सत्र री कार्यवाही ने सुचारू रूपू चलावा माए इमदाद करे। श्री रिजिजू कया के संसद सगड़ारी है और इन दौरान सरकार न्यारा न्यारा विधेयक करेला और विधेयक पेश करेला। वना आज जताई के विपक्ष और सत्ता पक्ष सदस्य रचनात्मक रूपू इन माए भाग लेवे। श्री रिजिजू कया के संसद जित्ती चोखी तरीकाऊ काम करेला देश का तर उत्तो ही चोखो रहवेला।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संसद रा मानसून सत्र माए कई महताओ विधायी मामला माथे चर्चा करिया जाबा और वाने पारित करिया जाबारो अंदाजो है। आज री सर्वदलीय बैठक रे मार्फत सरकार ने आस है के सगला राजनीतिक दल संसद री कार्यवाही सुचारू रूपू चलाबा माए इमदाद करेला। ओ सत्र 13 अगस्त ताई चालेला। राज्य सरकारी कानियों करिया जा रिया निवेश प्रोत्साहन री कोशिशा ने राष्ट्रीय स्तर माथे सराहना मिली है। नीति आयोग री कानियों जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य री श्रेणी माए थौड़ मिली है। बत्ती जानकारी समाचार कक्ष सु।
2: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे ने वारी जयंती माथे श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट माए कया के मंगल पांडे रो शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय खातर गर्व री बात है। वे कया के मंगल पांडे री देशभक्ति और वीरता री गाथा देश री पीढ़िया ने प्रेरित करती रहवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रा नायक

मंगल पांडे ने सिरदाऊं याद करता थका सोशल मीडिया पोस्ट में कया के मातृभूमि री स्वतंत्रता खातर मारो समर्पण और राष्ट्र प्रेम सगला माए हमेशा देश सेवा और राष्ट्र हित खातर जाग जगावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य अहलकारा ने हर एक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलावारी सूची तैयार करबा और आरी रोजाना मॉनिटरिंग करबारा निर्देश दिया है। वणा जरूरत पड़बा माथे रेफरल सुविधावा मुहैया कराबा ने कया। मुख्य सचिव आज जयपुर सु वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत प्रदेश री मातृ और शिशु स्वास्थ्य राज्य रा सगला मेडिकल कॉलेज रा अधीक्षका और स्त्री रोग विभागाध्यक्ष सु लारला 24 घंटा माइविया सामान्य अर्सिजेरियन जापा और वारी हाल रा स्वास्थ्य रा बारा माई जानकारी लेर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वणा प्रसव रे पछे आवता 24 घंटा धात्री महिला ने गहन निगरानी माय राखबा और वारा पोषण रो पूरो ध्यान राखबा ने कया। मुख्य सचिव सगला सपाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया है। बैठक माय चिकित्सा महकमा री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और दूजा ठावा अधिकारी मौजूद रिया। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय रा अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनियारी अगुवाई में केंद्रीय दल आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम रा प्रभावी क्रियान्वयन खातर समीक्षा बैठक करी। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान समेत केंद्र और राज्य स्तरीय अहलकार भाग लेना। इन दौरान जिला में चल रही न्यारी न्यारी गतिविधियां और प्रगति माथे बत्ती चर्चा करी गई। एहलकारा ने योजनावारा प्रभावी संचालन पारदर्शी क्रियान्वयन और बत्तों बत्ता लोगां ताई फायदो पुगा वखातर जरूरी निर्देश दिया गया। बालोतरा माय निर्माण मजूरारी समस्या मारो तुरंत हल कार्ड बाखातर शह महकमारी कानियो कालसू 3 दिन रो विशेष शिविर राख्यो जावेला। इन माय मजूरारा निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजना वसू जुड़िया लंबित आवेदनारो निस्तारण करियो जावेला। ओ शिविर महकमारा स्थानीय कार्यालय माय राख्या जावेला। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। प्रदेश माय मानसून रे फेरू रफ्तार पकड़ बारा संकेत मिल रिया है। मौसम केंद्र जयपुर आज प्रदेश माय 15 जिला माय आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। अंदाजा रे मुजब पहली पूर्वी राजस्थान और उनरे पछे राज्य रा पश्चिमी हल्का माए बारिश आवक वह सके है। कालू कोटा भरतपुर जयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ एक हल्का माए बारिश वह सके है। इन बीच प्रदेश माए कटे कटे मेह बरसियो। लाडला 24 घंटा रे दौरान सबूबत्तो 32 मिलीमीटर में दौसा जिला रा बसवा माए दर्ज करियो गयो। इन रे इतर अलवर धौलपुर बूंदी और कोटारा कुछे खलका माए छितरायो में बरसियो। आज दोपहर पछे कोटपुतली बहरोड माए कुछे थोड़ा माते में बरसियो। इनसो आम जन ने तेज गर्मी सो थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे बादल छायोड़ा है। विभाग रे मुजब प्रदेश माए इन मानसून सीजन रे दौरान हाल ताई सामान्य करीब 25% कम बिरखा भी है। करौली जिलो आज आपरोत्थापना दिवस मना रियो है। इन मौके जिला भर में साइकिल रैली स्वच्छता अभियान पौधारोपण और न्यारी न्यारी होना राखी गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करौली रात थापना दिवस माथे जिला वासियां ने शुभकामनावां दी। सोशल मीडिया संदेश माए वे कया का ओ जिलो आस्था इतिहास और प्राकृतिक वैभव री अनुपम धरोहर है। वणा कया के करौली लगातार विकास समृद्धि और खुशहाली रा नया आयाम स्थापित करिया है। फीफा विश्व कप 2026 रो फाइनल मुकाबलो आज अर्जेंटीना और स्पेन रे बीच खेलू जावेला। भारतीय टीम रे मुजब ओ मैच न्यूयॉर्क रा न्यूजर्सी स्टेडियम माए रात के 12:30 बजे सु शुरू वेला। इनसु पहली काल मियामी स्टेडियम माए तीजी ठौड़ खातर खेलिया गया मुकाबला माए इंग्लैंड फ्रांस ने 6-4 सु मात देर कांसारो तमगो जीत लियो। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रो खिताब जीत बा माथे पीवी संधु ने बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट माए डॉक्टर मांडविया कया के जापान ओपन रो खिताब जीत पावाली पहली भारतीय बनर सिंधु इतिहास रच दीनो। वे कया के वारी इन उपलब्धि माथे पूरा

0: कृष्ण गर्व है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पढ़निया और मारा माता पिता ने ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र ओएमआर शीट री जांच खातर केवल असली ओएमआर ही जमा कराबारी राय दी है। फर्जी या एआई सु बनाई गई ओएमआर शीट देबा माथे कानूनी कार्यवाही वै सके है। इन खातर पढ़निया और मारा अभिभावका सु अर्ज करी गई है कि वे जांच खातर केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी वेला। इसारो आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए विचार भेजा जा सके है। और अबे आखिर माए खास खबरां एकर फेरूं। संसद रो मानसून सत्र काल सु सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगला दलाओं सदन सुचारू रूप चलाबारी अर्ज करी गई। नीति आयोग री कानियो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य री श्रेणी माए थोड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला वारी लगातार मॉनिटरिंग करवा और सफाखाना ने जरूर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करवा ने कया। और प्रदेश माए मानसून एक बार फेरू रफ्तार पकड़ सके है। आज 15 जिला माए आंधी और बारिश रो अलर्ट। इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को प्रवीणा बहन की घनी घनी राम राम। कैसे हो किसान भाइयों? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। किसान भाइयों, आज अपने ग्राम भारती कार्यक्रम में हम जो पहले चर्चा लेकर आए हैं वो है मिर्च की खेती एवं नाशी जीव प्रबंधन के बारे में। साथ ही आपको भेंटवार्ता सुनाएंगे खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण के बारे में। जानकारी देंगे श्री बच्चू सिंह, सहायक कृषि अधिकारी अलवर। साथ ही जानकारी देंगे आपको संतुलित पादप पोषण के लिए मृदा का प्रबंधन के बारे में, और साथ ही आपका करवाएंगे मनोरंजन। तो किसान भाइयों, आते हैं अपनी चर्चा पे, जिसका विषय है मिर्च की खेती एवं नाशी जीव प्रबंधन। किसान भाइयों, मिर्च एक नकदी फसल है क्योंकि यह भोजन का प्रमुख अंग भी है, और मिर्च में विटामिन ए, सी, फास्फोरस और कैल्शियम भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। साथ ही मिर्च का जो फल होता है वो तेज स्वाद व मसाले वाला, रक्तवर्धक, पीड़ा नाशक, दर्द व सूजन को दूर करता है। मिर्च किसानों की आय बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण एक साधन कह सकते हैं या फसल कह सकते हैं। किसान भाइयों, इसका जो प्रमुख मिर्च के जो भारत में 0.31 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल में मिर्च की खेती की जाती है, परंतु उत्पादकता का स्तर बहुत कम होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह कई तरह की बाधाएं जैसे कीट, रोग, सूत्रकृमि इत्यादि उत्पादन में भारी कमी इसको कर देते हैं। किसान भाइयों, मिर्च के मुलायम और कोमल होने की वजह से और सघन वनस्पतिक बढ़वार है, नम वातावरण और अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग होने के कारण भी कीट व रोगों का आक्रमण अधिक होता है। किसान भाई, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन नाशी जीवों के प्रकोप के शीघ्र नियंत्रण हेतु

जहरीले रासायनिकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रभाव प्रकृति के प्रत्येक जीवित व अजीवित घटक पर पड़ रहा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सूक्ष्म जीवों के विनाश के साथ प्राकृतिक स्रोतों का भी विनाश होना, खाद्यान्न में जहर की अधिक मात्रा आदि। और अब इन समस्याओं से बचने का एकमात्र विकल्प यह है किसान भाइयों कि वह जैव साधन नाशी जीव प्रबंधन, क्योंकि जैव साधन नाशी जीव प्रबंधन देसी खेती का उन्नत तरीका है, जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष एवं प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीट नियंत्रण द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाते हुए फसल का उत्पादन करना। किसान भाइयों, बात करें जलवायु की, तो मिर्च की खेती के लिए उष्णीय और उप उष्णीय जलवायु की आवश्यकता होती है। भूमि की बात करें तो अच्छी जल निकास वाली कार्बनिक युक्त बलुई मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। किसान भाइयों, उन्नत किस्म की बात करें तो पूसा ज्वाला, एलिफेंट ट्रैक, पंत C1, पटना सूर्या, मथानिया लौंग, G4, G3, पंत C2, भास्कर अग्नि आदि। खेत की तैयारी की बात करें तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 1 से 2 जुताई देसी हल से करके आप मिट्टी को भुरभुरी एवं खेत को समतल कर लें। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, 1 हेक्टर में मिर्च के लिए आप 1.5 से 1.25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब पौध तैयार करने की बात आई किसान भाइयों, तो नर्सरी में बीज की बुवाई कर हम पौध को तैयार कर लेते हैं। साथ ही खरीफ फसल के लिए मई के प्रथम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक और गर्मी की फसल के लिए फरवरी में भी कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधशाला में 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाकर बीज को 1 इंच की दूरी पर पंक्तियों में बो दें और खाद से इसको ढक देते हैं। फिर पूरी क्यारियों को खरपतवार से ढक देना चाहिए। बीज को जमने के तुरंत बाद आप शाम के समय खरपतवार को हटा दें। किसान भाइयों, अब पौधरोपण की बात आए तो जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं तो पौधों को ट्राइकोडर्मा 100 ग्राम प्रति लीटर घोल से उपचारित करके शाम के समय खेत में लगाएं। किसान भाइयों, अब बात करें खरपतवार नाशी की, तो फसल की अच्छी बढ़वार और खरपतवार से मुक्त रखने के लिए आप आवश्यकता के अनुसार 2 निराई गुड़ाई 20 से 25 एवं 45 से 60 दिनों के बाद करें। यदि खेत में खरपतवार का प्रयोग ज़्यादा हो तब बुआई के पहले खेत में अच्छी नमी की दशा में आप बेसालेन 2.25 यानी कि 2.25 लीटर प्रति हेक्टर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। खाद उर्वरक की बात करें तो 25 से 30 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम हेक्टर पोटास की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, गोबर की खाद, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के पहले खेत की तैयारी के समय और शेष नाइट्रोजन को 2 बार में क्रमशः जैसे रोपाई के 40 से 50 और 80 से 90 दिन बाद देनी चाहिए। साथ ही पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करें और गर्मी में आप 4 से 5 दिन और के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, नासी कीट की बात करें तो इसके जैसे प्रमुख नासी जीव होते हैं फल भेदक। ये प्रजनन के समय सक्रिय होते हैं, यानी कि जो पौधों के प्रजनन के समय होता है उस समय ये सक्रिय हो जाते हैं। इस कीट की पूर्व विकसित सुंडी हरे रंग की होती है। इस कीट की सुड़ियां पत्तियों के अलावा हरे भागों को कुतरती है, इससे अधिकतम क्षति फलों को होती है। किसान भाइयों, मोइले की बात करें तो इसका आक्रमण शुष्क एवं ठंडे वातावरण में होता है। मोइला के शिशु और वयस्क पत्तियों व टहनियों से द्रव को चूसते हैं, जिससे पौधों की शक्ति में भी कमी आ जाती है और पत्तियों पर यह शहद जैसी बूंदों का स्राव करते हैं जो मक्खियों तथा चींटियों को आकर्षित करती है। ये विषाणु रोगों का भी फैलाते हैं। किसान भाइयों,

0: सफेद मक्खी की हम बात करें तो अधिक आर्द्रता में इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इसके शिशु अंडाकार स्केल जैसे होते हैं जो पत्तियों पर चिपके रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो था अपनी चर्चा मिर्च की खेती और नाशी जीव प्रबंधन के बारे में। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण। जानकारी दे रहे हैं श्री बच्चू सिंह, सहायक कृषि अधिकारी अलवर। आइए सुनते हैं वो हमें क्या क्या अच्छी जानकारी दे रहे हैं।
1: किसान भाइयों, राम राम। आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं खरीफ दलहनी फसलों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह चौधरी, सहायक कृषि अधिकारी। तो बच्चू सिंह जी नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार।
1: तो बच्चू सिंह जी, हमारे किसान भाइयों उनको आप जानकारी दें खरीफ फसलों में। देखिए, अब जैसा कि बुआई हो चुकी है, अब है बात निराई गुड़ाई की। तो निराई गुड़ाई हमारे किसान भाई हैं वो किस तरह से करें?
2: किसान भाइयों, दाल वाली जो फसलें हैं उनमें प्रमुख रूप से जो किसान भाई इन दिनों में बुआई करते हैं उसमें मूंग, उड़द, चौला, अरहर, ये दाल वाली फसलें बोई जाती हैं। इसमें किसान भाइयों को आवश्यकता अनुसार खरपतवारों का नियंत्रण करते हुए रहना चाहिए। खरपतवार फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जो पोषक तत्व तो फसल को मिलने चाहिए, खरपतवार उनका उपयोग करके अपने लिए उनको काम में ले लेते हैं। इसलिए किसान भाइयों को आवश्यकता अनुसार फसल से, दलहनी जो फसलें किसान भाइयों ने बो रखी हैं उनसे खरपतवारों का नियंत्रण करते रहना चाहिए। खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु किसान भाई इमीजा थापर 35% या इमाजा मोक्स 35% के मिश्रण को 17 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 दिन की फसल अवस्था पर छिड़काव करें। किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि खरपतवार नाशी का यदि किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में ले रहे हैं तो इसकी एक अवस्था होती है। किसान भाई फसल बुवाई के 20 या 25 दिन की फसल अवधि पर ही इनका प्रयोग करना है। यदि फसल अधिक दिन की हो गई हो, जैसे 1 महीने की हो गई है या 40 दिन की हो गई है, उस स्थिति में किसान भाई खुरपी से खरपतवारों का नियंत्रण करें
1: जी। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को और कई छोटी छोटी बातें हैं उनका हम भी बताते रहना चाहिए। जैसा कि इनमें कई तरह के कीट हैं, उन बातों में हम हमारे जो किसान भाइयों को जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। रस चूसक कई तरह के कीट ये दलहनी फसलों में लगते हैं, तो मुख्य रूप से कौन कौन से कीट लगते हैं?
2: किसान भाइयों, दलहनी फसलों में नुकसान पहुँचाने वाले रस चूसक कीटों में जैसे मूलिया है, हरा तेला है, सफ़ेद मक्खी है, ये पत्ती का तने का रस चूस के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे फसलों में पीलापन आ जाता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, और जो कई तरह से जैसे कीट जैसे ही रस चूसेगा उसके बाद उस पर फंगल का, बैक्टीरिया का, इनका भी क्या है वो एक तरह से नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाई इनके नियंत्रण के लिए डाइमिथोट 30 cc 1 लीटर या मेलाथियन 50 cc 1 से 1.25 लीटर या मेलाथियन 5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई काम में ले। में और भी जैसे इनके नियंत्रण के लिए काम में ली जाती हैं उनमें एसीटामाइप्रेड 20% SP या इमिडाक्लोप्रेड 17.8 SL 165 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई छिड़काव करें
1: जी। कीटों के अलावा दलहन फसलों में बीमारियां और रखती हैं, तो हमारे किसान भाइयों को आप इनमें कौन कौन सी बीमारियां इनके बारे में भी जानकारी दें।
2: किसान भाइयों, दलहनी फसलों में जो बीमारियां जो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं उसमें पहली बीमारी है चित्ती जीवाणु रोग, दूसरा जैसे पीच सेरा मोज़ेक विषाणु रोग, छाछ रोग, सर्कोस्पोरा रोग, स्टेम ब्लाइट, तना झुलसा रोग, पीलिया रोग। इसके अलावा एक और बीमारी है जैसे क्रिंकल विषाणु रोग। इन सभी बीमारियों के अलग अलग तरह से लक्षण फसलों में देखने को मिलते हैं। जैसे
1: इनमें जैसे चित्ती जीवाणु रोग है, ये इस तरह से इसके लक्षण क्या है?
2: चित्ती जीवाणु रोग मूंग तथा चौला में ये रोग जैंथोमोनास जीवाणु द्वारा फैलता है। रोग में छोटे गहरे भूरे धब्बे पत्तों पर तथा प्रकोप बढ़ने पर फलियों और तनों पर भी ये रोग दिखाई देता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। रोग दिखाई देते ही इसमें जैसे किसान भाई एग्रामाइसिन

0: ताम्रयुक्त कवकनाशी प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई छिड़काव करें। दूसरा जैसे पीत सरा मोजेक रोग,
1: दलहनी फसलों में तीनों चीजें हैं जैसा मान उड़द मूंग चौला ये कई,
0: हाँ सभी फसलें दलहनी फसलों में ये कॉमन बीमारियां हैं जो सभी फसलों में ये देखने को मिलती हैं।
1: तो पीत सरा रोग है, इसके जो लक्षण है उसके बारे में बताएं।
0: पीत सरा रोग में जैसे रोग की रोकथाम, इसमें जो पत्ती की जो सिरा होती है वो पीली पड़ जाती है, और इस रोग की रोकथाम के लिए इसका प्रकोप दिखाई देते ही डाइमिथियोट 30 cc का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, और आवश्यकता हो तो 15 दिन के अंतराल पर किसान भाई दूसरा छिड़काव दोहराएं।
1: जी, अब बात करते हैं छाछा रोग की। दलहनी फसलों में छाछा रोग भी मुख्य रूप से लगता है, तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें।
0: छाछा रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर शुरू में सफ़ेद गोलाकार पाउडर से धब्बे बनते हैं तथा बाद में पाउडर सारे तने एवं पत्तियों पर फैल जाता है। पत्तियां छोटी रहकर पीली पड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए 2.5 किलोग्राम घुलनशील गंधक अथवा केराथेन 1 लीटर 0.1% के घोल का किसान भाई छिड़काव करें, और यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 10-15 दिन के अंतर पर करें। इसके अलावा किसान भाई इस रोग की रोकथाम के लिए 25 किलो गंधक के चूर्ण का भी बुरकाव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दलहनी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली जो बीमारी है वो है तना झुलसा रोग।
1: जी,
0: इसमें किसान भाई इसके लिए बीज उपचार करें। जैसे किसान भाई जब भी दलहनी फसलें बोने जा रहे हैं तो उस टाइम बीज का उपचार करके बोएं, और यदि कीट का प्रकोप दिखाई दे तो उसे 30 दिन बाद चौला में या 30 से 40 दिन बाद मूंग की फसल में 2 किलोग्राम मैंकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, और यदि जैसे 15 दिन बाद फिर अगर रोग के लक्षण दिखाई दें तो इसको दोहराएं, यानी 15 से 20 दिन बाद किसान भाई मैंकोजेब का पुनः छिड़काव करें।
1: जी, इसके अलावा दलहनी फसलों में सूखा जड़ सड़न रोग है, वह भी लगता है, तो बच्चू सिंह जी उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को हम बताएं।
0: सूखा जड़ सड़न रोग की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को 1 ग्राम कार्बेंडेजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अगर किसान भाई जैसे बीज उपचार नहीं कर पाए हैं और रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इस ऐसी स्थिति में 30 से 35 दिन की अवस्था पर 2 किलो मैंकोजेब अथवा 3 किलो ताम्र कवकनाशी जिसमें कॉपर ऑक्सिल क्लोराइड आता है का प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस तरह किसान भाइयों को जो मैंने दवाइयां अलग अलग कीटों और बीमारियों के लिए बताई हैं उनको उनका छिड़काव करके किसान भाई अपनी फसल को कीट और बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: बच्चू सिंह जी, इसके अलावा दलहनी फसलों में किंकल विषाणु रोग और लगता है, उसके बारे में भी हमारे जो किसान भाई उनको बताएं किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं उनको और उनके रोकथाम वो कैसे करें।
0: किंकल विषाणु रोग, ये जो रोग है ये वायरस से फैलने वाला रोग है, और एक बार जब ये किसी जैसे पौधे में लग जाता है तो इसका क्या है कि इसका जो जितना ये पौधे को नुकसान पहुँचा चुका होता है उसको उतना तो, लेकिन ये क्या है कि सफ़ेद मक्खी के द्वारा जैसे जिस पौधे में ये रोग लग जाता है वहाँ से सफ़ेद मक्खी एक कीट है उसको दूसरे स्वस्थ पौधे पर इसके वायरस को ले जाती है, और जो स्वस्थ पौधा होता है उसमें फिर ये रोग उसके द्वारा लग जाता है। अतः इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को डाइमिथियोट 30 cc 1 लीटर या मिथाइल डिमेटोन 25 cc 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
1: बच्चू सिंह जी, अंत में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें खरीफ फसलों में यानी कि खरीफ दलहनी फसलों में बीमारी और कीट इनकी रोकथाम में क्यों आवश्यक है।
0: किसान भाइयों, आज जो चर्चा का विषय था वो था खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों से भी नुकसान जो होता है वो 10 से 60-70% तक हो जाता है फसल को, तो किसान भाई समय समय पर इनका फसल से नियंत्रण करते रहें तो जो फसल को खरपतवारों से जो नुकसान होगा उससे बचाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जैसे अभी बहुत बरसात हो रही है, टेम्परेचर भी बीच बीच में बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कीट एवं बीमारियों से जो नुकसान

0: संभावनाएं वो बढ़ जाती है। और किसान भाइयों को यदि कीटों से या बीमारियों से फसल को नुकसान, फसल में नुकसान दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो किसान भाई पहचानें कि कौन सा कीट नुकसान पहुंचा रहा है उस, और या कौन सी बीमारी नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि कीट भी अलग अलग तरह से जैसे नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां भी अलग अलग तरह की मैंने अभी आपको बताई थी। तो सबसे पहले उसका ये देखें कि भाई कौन सा कीट और कौन सी बीमारी नुकसान पहुंचा रही है, उसी के अनुसार उसमें कीट नियंत्रण करें और बीमारी का नियंत्रण करें। हर बीमारी और कीटों के नियंत्रण के लिए दवाइयां अलग अलग आती हैं, उनका घोल किस तरह से बनाना है, कितने अंतराल पर, समय अंतराल पर इनका छिड़काव करना है, इन और कौन सी दवाई किसान भाइयों को कौन सी बीमारी और कीट के लिए काम में लेनी है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अपने नज़दीकी जहाँ भी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या कृषि का कोई कार्यालय है, वहाँ से किसान भाई जानकारी लेकर और कीट और बीमारियों का नियंत्रण करें, और इससे जो कीट और बीमारियों से होने वाले नुकसान से किसान भाई अपनी फसल को बचा सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं और उससे मुनाफा भी अच्छा मिलेगा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चू सिंह जी, आपने हमारे सभी किसान भाइयों को खरीफ दलहनी फसलों में लगने वाले कीट बीमारियाँ और उनके रोकथाम के बारे में विस्तृत रूप से बताई। सभी बातों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद बच्चों सिंह जी। किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता। अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। आइए सुनते हैं।

माने चूनड़ी मंगाते हो और नंदी के बीरा। सीमा मिश्रा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत किसान भाइयों आपने सुना। अब किसान भाइयों आपको देने जा रहे हैं जानकारी जिसका विषय है संतुलित पादप पोषण के लिए मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन। किसान भाइयों, बढ़ती आबादी, लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके आहार के लिए भूमि के 36 विस्तार की न्यूनतम गुंजाइश है, यानी कि दुनिया भर में मिट्टी के स्वास्थ्य और इसका स्थायी प्रबंधन वर्तमान में चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है। किसान भाइयों, बात करें हम संरक्षित कृषि की, तो संरक्षित जो कृषि है पारंपरिक खेती की तुलना में कम जुताई करने और मल्चिंग प्रभाव के कारण जो मिट्टी है उसकी नमी को संरक्षित करने में मददगार होती है। किसान भाइयों, संरक्षित कृषि के अंतर्गत यानी कि शून्य जुताई मशीन से भूमि की तैयारी में लगभग 50 से 60 लीटर हेक्टर डीजल की बचत होती है और कम बीज दर के साथ जल्दी बुवाई हो जाती है। इस प्रकार लगभग 4 से 5 हजार रुपये प्रति हेक्टर की बचत हमारे किसान भाई कर लेते हैं। साथ ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि एकीकृत पोषक जो तत्व प्रबंधन द्वारा अपवाह, निक्षालन, वाष्पीकरण और स्थिरीकरण के कारण जो पोषक तत्व है उनकी हानि को कम किया जाता है। ऐसा करने से जो पोषक तत्व है उसके उपयोग की जो दक्षता है उसमें सुधार होता है। इस प्रकार का जो प्रबंधन है वो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने और भूमि के क्षरण को कम करने के साथ साथ जो मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों

को भी सुधारता है। अब बात करें नैनो उर्वरक की, तो किसान भाइयों नैनो उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल और पारंपरिक जो रासायनिक उर्वरक है उनके टिकाऊ के विकल्प होते हैं। ये उर्वरकों में अद्वितीय भौतिक रासायनिक गुण होते हैं। ये गुण उन्हें सामान्य उर्वरकों से अधिक बेहतर बनाते हैं। किसान भाइयों बात करें हम पोषक तत्व प्रबंधन की, तो मिट्टी की विशेषताओं की जो परिवर्तनशीलता है उसके आधार पर हम आदान के उपयोग की दक्षता में वृद्धि के लिए सटीक कृषि में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि इन तकनीकों में हम सेंसर, सूचना यानी कि GIS व GPS, उपयुक्त मशीनरी और ड्रोन का भी आदि का इस्तेमाल भी हम करते हैं। बात करें हम संतुलित उर्वरक की, तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने का जो शुरू कर दिया है, इससे न केवल मिट्टी की सेहत को नुकसान होता है बल्कि पर्यावरण को भी हानि होती है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और संतुलित रूप से पौधों के पोषक तत्व बढ़ाने के लिए आदर्श NPK उर्वरकों का उपयोग अनुपात उचित में करना चाहिए। किसान भाइयों ये तो था हमारे संतुलित पादप पोषण के लिए मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी। अब आपको जाते जाते आज दे जाते हैं मौसम की जानकारी। तो आज दिन में अधिकतम तापमान जो रहा वो था 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जो जाने की संभावना है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसान भाइयों अब हमारा समय हो गया है कि ग्राम भारती कार्यक्रम है उसको समेटें और आपसे लें विदा। जय जवान जय किसान, घने घने राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोता ग्राम भारती कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आपने मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत सुना। फिल्म थी मेरे हमदम मेरे दोस्त। गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

और अय्यब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मस्ती फिल्म का एक गीत सुनते हैं। आवाज आनंद राज आनंद की है।

मधुहोशी फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाजें थी उदित नारायण और साधना सरगम की। गीत को शकील आजमी ने लिखा था, संगीत रूप कुमार राठौड़ का था।

ये गीत है लता क्षमा कीजिएगा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म है कुछ कुछ होता है।

लीजिए, अब कार्यक्रम के आखिरी में दर्द फिल्म का गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत को नक्श लालपुरी ने लिखा है और इस गीत के लिए संगीत दिया है खय्याम ने।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज सुनिए डिंपल माथुर के गाए लोकगीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने

0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
1: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, क्योंकि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
2: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो, एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, वी हैड टू बी गिविंग चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउड द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
3: इट इज द फर्स्ट एवर विजिट बाई एनी इंडियन प्रेसिडेंट टू मोल्डोवा।
4: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार

0: पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
2: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म रांझना से, आवाज़ें श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा दत्त की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का

0: अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया,
1: गया।
0: एक और आ गया।
1: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाज़ें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जॉय बरुआ की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे थोड़ी देर बाद दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मानसून सत्र जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है, कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहां पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मानसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा, जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी हैं, अपनी पार्टियां बना ली हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड हैं कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक

है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से, और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को,

0: बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे, और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इससे उनसे भी अलग हुए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि कैथल की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमें देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो, आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हमने यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कर रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों पर रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में, वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे

0: सबसे मजबूती से इस मॉनसून सत्र में उठाने वाली है?
1: तो एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गाँव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
0: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
2: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी उस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एक फर्जी एफआईआर, एक फर्जी एसआईटी का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
0: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है, और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
3: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देश के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की हुई, और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग थे उनके वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर

0: केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नाकारे जाएंगे, जो बचे खचे लोग वो भी नाकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में है, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी कर दे वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो इसराइल जाते हो ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें वो राजनीति है? क्या राजनीति जो राजनीतिक मंच है राजनीतिक मसले है उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए डायलॉग से नहीं किया जाए तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध डालने ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मानसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं रचनात्मक क्यों नहीं दे हैं? हम तो बिल्कुल जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको पुनाने का महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है जी।

0: भी एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
1: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भलीभांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
0: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
2: क्योंकि अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल, यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ धकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विदिन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो के इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे, और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे या डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखें जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती, हमने आम

0: के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर्स हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन देते हैं 80 करोड़ लोग के, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आप हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, ईट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है, जफर साहब अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आप

0: में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से लिए किए जाएंगे।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। समय के स्केल पर हमें नहीं पता कि कब हमारे दिल पर लिख गया था तुम्हारा नाम। समय की शुरुआत से चल रहा है जो सफर, उसे समय के आखिर तक कायम रहना है। हम और तुम समय के थपेड़ों के बावजूद मिलते रहे हैं, हम चलते रहे हैं साथ, और बस साथ ही चलते रहना है हमें। ये सफर जिंदगी का नहीं, समय का सफर है, और हर पल के चेहरे पर तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए।

दुनिया बधावासियों का मेला है। ये धक्के मारती दुनिया, ये कंधे चीलती दुनिया, ये दुनिया जिसमें ख्वाब टूटते हैं, ये दुनिया जिसमें लगती है दिल की खरोंचें। कभी कभी लगता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो कोई ऐसा अलग कोना जहां हम तुम साथ बैठ सकें और अपने दिल का राग छेड़ सकें, ऐसा कोना जहां हम खुद से मुलाकात करें और फिर बस वो लम्हे हमेशा के लिए खिल जाएं दिल की वादियों पर।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए।

आवाजों का कोई मजहब नहीं होता। आवाजें दुनिया की तमाम सरहदों के पार चलती हैं। हम सब महज एक शख्स नहीं, एक किरदार नहीं, आवाजें हैं हम। हम आवाजों की दुनिया के मुसाफिर। हमें कायम रहना है हमेशा एक आवाज की शक्ल बनकर। तुम्हारी आवाज गूंजती रहे कानों में, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे बांसुरी की मीठी तान, जैसे झरने की प्यारी मुस्कान।

तुम्हारी बातें गूंजती हैं हमेशा कानों में, गूंजती है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान का एक सुर है जो इस कमरे में गूंजता रहता है हमेशा। तुम नहीं होती तब भी तुम होती हो अपनी सुरीली बोली बनकर। तुम्हारी आवाज को अपने कानों में सजा लेते हैं हम, और बस उसके बाद हमें दुनिया में किसी चीज की तरह

0: छाया गीत में आज थे भूपिंदर सिंह के कुछ बेमिसाल नगमे, फिल्मों के नाम, थोड़ी सी बेवफाई,
1: आज बिछड़े हैं,
0: फिल्म मौसम,
1: ढूंढता है फिर वही,
0: फिल्म किनारा,
1: मेरी आवाज ही पहचान है,
0: और फिल्म दूरियां,
1: सामने दीवार थी गुदरियों की।
0: आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

क्यों आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को

0: लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM एंड 103.1 MHz पर। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।